एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिक अतिशयासङ्गकल्याणगुणगणाम् अप्रमेयकृपारत्नाकरम् भगवन्तम्।

me. अर्जनम् भो बीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनम् यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम् महाराज की। सन्दवळे परमारथी भेषधरे यमदूत राम नाम की गर्जना भागजा यमदूत श्रीसीतारामनाम् महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महा।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

हूँ, आज मंगलवार है, 7 जुलाई 2024, पंचांग 1948 के आषाढ़ महीने की 13वीं तिथि, माफ कीजिएगा 16वीं तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण लेकर हम उपस्थित हैं। उद्घोषक इकबाल कादिर का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। हम सभी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की मनोकामना कामना करते हुए आज के इस ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं।

आकाशवाणी ईस्ट नगर का FM बालताल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ आप हमारा ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, आज यात्रा का 5वां दिन है। आज तक जो हुआ उससे हम प्रसन्न हैं, उससे हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो प्रसन्न हैं। सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं, जो सुविधा के इंतज़ाम किए गए हैं, उनसे सभी लोग फ़िलहाल के लिए खुश हैं। जो भी कुछ प्रशासन कर रही है उसके लिए सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और इसी बीच हम तक हमारे जो संवाददाता हैं एस तारिक, पहलगाम से हमें ये रिपोर्ट भेजी है कि अनंतनाग का जो बेस कैंप है वहाँ से आज सुबह तड़के बालतल के मार्ग के लिए 2370 यात्रियों को रवाना किया गया और इसी के साथ 3461 यात्रियों को पहलगाम के मार्ग से रवाना किया गया पवित्र गुफा की जानिब। अगर हम बात करें बालतल मार्ग की तो इस मार्ग पर कुल मिलाकर 1149 पुरुष, 23 बच्चे, 348 साधु, 67 साध्वीज और जो बाकी जो लोगों की कुल तादाद है वो है 31। और अगर हम पहलगाम मार्ग की बात करें तो 3461 पुरुष, 1044 महिलाएं, 7 बच्चे, 250 साधु, 64 साध्वीज। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि जो मुल्क से बाहर के यात्रियों की तादाद है वो बालतल के मार्ग से जाने वालों की कुल तादाद 31 है। और जो हमारा पहलगाम का मार्ग है इस मार्ग से कुल मिलाकर 4826 यात्रियों को जो है वो रवाना किया गया है इस मार्ग के ज़रिए और 3998 यात्रियों को पहलगाम बालतल के मार्ग से रवाना किया गया है। और ये आंकड़ा जो है कुल मिलाकर 8815 पे मुश्तमिल है। कुल मिलाकर जो 363 गाड़ियों में यहाँ पहुँचा था।

0: श्रोताओ, मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है अपनी घाटी के विभिन्न भागों में जो हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करने का और जानने का हाल जो पिछले दिन का रहा और जो आने वाले दिन की हमें हमारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उस हवाले से क्या कुछ है। तो इसी सिलसिले के तहत हमारे साथ इस वक्त हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब टेलीफोन लाइन पर हमसे जुड़ गए हैं। जावेद, आपका खैर मकदम है
1: जी।
0: जी, क्या कुछ रहा कल के दिन का लेखा जोखा और आज के दिन की शुरुआत कैसे हुई और क्या है आपके पास ताजा तरीन मालूमात?
1: जी, मंदिरों के शहर जम्मू में मैं बात करूं तो पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सेवा का भाव बढ़ता ही जा रहा है। शहर में जगह जगह लंगर और ठहरने की व्यवस्था में प्रशासन के अलावा यहाँ के स्थानीय लोग भी इंतजाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा के इस पहले सप्ताह में हर श्रद्धालु अपने साथ एक अलग अनुभव के साथ यहाँ से लौट भी रहा है। किसी के लिए ये सेवा और समर्पण का अनुभव है और किसी के लिए ये व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत का संदेश भी श्रद्धालु देते नजर आ रहे हैं। भगवती नगर यात्री निवास से तवी रिवर फ्रंट तक श्रद्धालुओं से बात करने पर यात्रा के लिए कई रंग सामने आए, जहां लंगरों की सेवा ने किसी का मन जीत लिया तो लंगरों पर मिल रहे खाने पीने के भाव और स्वाद ने घर जैसा अपनापन दिया। वहीं टोकन और पंजीकरण में दिक्कतें भी सामने जरूर आई है, उसको लेकर भी बातें हो रही हैं, लेकिन हर कर्मचारी ने तुरंत मदद भी की, इसकी भी बात हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन की खुशी के आगे सारी थकान और परेशानी खत्म भी हो जाती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तीर्थयात्रियों के लिए निजीकरण में और सुधार की जरूरत भी है। ये बातें भी जो श्रद्धालु है वो भी ये भी करते हैं। तो जहाँ सुधार की जरूरत है वहाँ खुशी की भी और उत्साह और जो जज्बा है वो बराबर बना हुआ है। और पहला सप्ताह जो है वो हालांकि इतनी बड़ी जो ये सेवा है, इतनी बड़ी ये जो यात्रा है, ये एक समझ लें आपके अपने आप में बड़े चैलेंज को सामने लाकर खड़ा करती है, क्योंकि देश भर से जम्मू कश्मीर की तरफ तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ जिम्मेदारी के साथ निभाना एक चैलेंज से काम नहीं है। जहाँ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगातार सुबह शाम लगे हुए हैं, वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा निजी संस्थाएं भी बराबर इस सेवा में लगी हुई है। तो इसी दौरान सोमवार को सुबह थोड़ी सी बारिश के बीच नगर निगम के कर्मचारी भी जो लगातार इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, किसी तरह से इस यात्रा को सफाई के साथ भी जोड़ा जाए ताकि ये यात्रा जो है वो किसी भी तरह से कोई मतलब कचरे के साथ या कोई और कचरा फ्री यात्रा बनी रहे, जिसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन न हो। क्योंकि एक तरफ तवी रिवर फ्रंट पर ये एक बहुत बड़ा जो यात्री निवास बनाया गया है, जहां पंजीकरण हो रहा है, सेवाएं दी जा रही है, कार्ड्स और जो प्रक्रियाएं है तीर्थ यात्रा की वो दी जा रही है। वहीं इस बात का खास ख्याल भी रखा जा रहा है कि पहले निवास भगवती नगर और तवी रिवर फ्रंट जो ये मेन दो निवास है, इन पर किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन या किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले, उसके लिए नगर निगम के कर्मचारी बराबर लगे भी हुए हैं। और कल जब थोड़ी बारिश हुई उसमें जल भराव भी हुआ इन एरियाज में, लेकिन निकास के काम में लगातार कर्मचारी लगे रहे और जगह जगह पर जो हालात बने हुए थे उनको जल्द ही सामान्य कर लिया गया इसकी जगह पर। और वही तवी रिवर फ्रंट पर भी सोमवार को बारिश ने कुछ मुश्किलें जरूर खड़ी की, लेकिन जल्द ही वापस जो है हालात सामान्य हो गए। वही बाबा बर्फानी के दर्शन का उत्साह हर चुनौती पर भारी देखने को मिल रहा है। भगवती नगर तवी रिवर फ्रंट के अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में देश के अलग अलग राज्यों से आए सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी लंगरों की ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दी है कि लंगरों में रोज हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करने के साथ साथ अपनी थकान भी मिटा रहे हैं। इस दौरान जम्मू के स्थानीय संगठन भी पूरे उत्साह के साथ सेवा भाव में जुटे हैं। सेवादारों का कहना है कि बाबा बर्फानी की कृपा से ये सेवा जारी है और इस सेवा में कई संगठन वर्षों से लगातार यात्रा के दौरान अपने लंगर लगाकर बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की पूरी सेवा भी कर रहे हैं। इसी दौरान रेलवे स्टेशन के आसपास भी लंगर लगे हैं। वही सिद्रा हाईवे पर भी बोले के भक्तों के लिए लंगर लगाए गए हैं। वही अनुमति के इंतजार में एक और मैं आपको बताऊं, क्योंकि 9 तारीख तक पंजीकरण बंद है।

0: श्रद्धालु है वो अपनी बारी के इंतजार में ट्रांजिट कैंप्स में रोके गए हैं, जहां उनके लिए देश भर से विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके लिए इंतजाम में भी लगी है, और उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार वहां पर अपना रोल निभा रही है। यहां भी लंगरों की भी व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं की पूरी तरह से मदद की जाए उनकी व्यवस्था में पूरी जिला एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। तो एक पूरी तरह से एक माहौल भी बना हुआ है जहाँ सेवाएं भी हो रही है, जहाँ सेवाओं को बेहतर करने की भी जरूरत है, जहाँ पंजीकरण को लेकर जो यात्री आ रहे हैं उसमें सख्ती भी की गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी भी यात्री को पवित्र तीर्थ यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: और उसके लिए इकदाम भी किए हैं और जगह जगह पर उसकी चेकिंग भी हो रही है तीर्थ यात्रियों की, ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसी बात ना हो जिसमें बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग पवित्र यात्रा की तरफ जाए, उसको सख्त कर दिया गया है
1: जी।
0: वही बात आज भगवती नगर के पहले निवास स्थान से रवाना होने वाले श्रद्धालु की कहे तो आज पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या 8,815 रही। एक बड़ा काफिला है जिसमें बालटाल मार्ग से जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 3,999 रही, जबकि पहलगाम की प्राचीन मार्ग से रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 4,826 रही, जबकि यात्रा में शामिल पुरुषों की संख्या अगर हम बात करें तो 5,831 है, महिलाओं की 2,193, बच्चे 30, साधु 598, साध्वी 132 और विदेशी मूल के तीर्थ यात्रियों की संख्या भी इस बार कई दिनों में नजर आई। आज की संख्या में 31 विदेशी मूल के तीर्थ यात्री भी इस यात्रा में शामिल हैं। 363 छोटे बड़े वाहनों में आज का ये बड़ा काफिला अपनी मध्यम रफ्तार में सुबह तड़के यहाँ से रवाना हुआ और घाटी की ओर बराबर अग्रसर है। उम्मीद है कि ये तीर्थ यात्रियों में उम्मीद और आस्था के साथ रोजाना यहाँ जम्मू के पहले भगवती नगर शिविर से यूं ही ये यात्रा रवाना होती रहेगी
1: जी। जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो यात्री वापस आ रहे हैं या जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो इंतज़ामात में किसी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपके इस इंफॉर्मेशन में क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट वो चाहते हैं कि इंतज़ामात में हो?
0: देखिए, यहाँ जो लौट रहे तीर्थ यात्री हैं वो कहीं पंजीकरण जल्द पंजीकरण की भी बात करते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा जो इंतजाम में जो है वो यहाँ जो तीर्थ यात्री कतारे लगाते हैं उन कतारों को किस तरह से कम किया जा सकता है, तीर्थ यात्रियों के बढ़ते रश को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है
1: जी।
0: और जल्द से जल्द सेवाएं मिलने और जल्द से जल्द उन्हें इजाजत देने की जो बात हो रही है वो एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी
1: जी, बिल्कुल।
0: चलिए, उनकी जो बात है वो भी बड़ी बात है, हर बार ये जो व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा भी होती है। मैं कहता हूँ कि हर दिन यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तीर्थ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए काम भी मीटिंग भी करते हैं और बात भी करते हैं, ताकि जो ग्राउंड पर कहीं कहीं किसी जगह पर कुछ कमियां हैं उनको किस तरह से सुधारा जाए उसकी बात वो करते हैं, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा जो है ये एक तो मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहली मुझे लगता है कि यात्रा है जहाँ हर तरह का इंतजाम प्रशासन और निजी संस्थाएं मिलकर करती हैं, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, उसमें भी बहुत कमियां होती है, क्योंकि हजारों यात्री जैसा आज भी बड़ा काफिला 8,800 के करीब का काफिला आज ही रवाना हुआ, तो प्रशासन भी चाहती है कि किस तरह से ये तीर्थ यात्री, लेकिन तीर्थ यात्रियों की भी आम लोगों की जो तीर्थ यात्री होता है वो भी हमारी तरह एक आम लोग हैं जिनको व्यवस्थाओं में कहीं कमी दिखती है, वो व्यवस्थाओं की कमी को दर्शाते भी है और उन व्यवस्थाओं को लेकर हम भी बात करते हैं प्रशासन से, और उनके सामने भी एक बड़ा चैलेंज होता है जिसमें मिलकर ही ये सारी चीजें सुधारी जा सकती है और ये सुधार मुमकिन हो सकता है
1: जी। रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने बात की थी बीच में कि रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो 9 तारीख तक बंद किया गया, इसकी क्या वजह है?
0: जी देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो न्यायालय है उन्होंने तीर्थ यात्रा को एक सीमित तादाद में ही आगे ले जाने की जरूरत पर अपना फैसला दिया है, उसी को लेकर जो प्रशासन है वो उस

0: फैसले को, उस हुक्मनामे को, उस निर्देश में किसी भी तरह की अवमानना ना हो, उसको लेकर बहुत सख्त है। क्योंकि जो तीर्थ यात्रा है वो जहाँ बहुत कठिन भी है,
1: बिल्कुल
0: कुदरत के ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ ग्लेशियर भी है, जहाँ कुदरत का एक अलग निजाम भी है, और उस जगह पर बेचना आप हजारों लोगों को एक ऐसी जगह पर नहीं रोज बेच सकते जहाँ बहुत कठिन हालात भी है, कुदरत का एक अपना माहौल भी है, बारिश भी है, मौसम भी है और सारी चीजें भी। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा है कि आप एक सीमित तादाद में ही आगे वहाँ इंतजाम करें ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी ना हो, वहाँ किसी भी तरह की कोई ऐसी कुदरती आपात ना आए जिसमें यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी आए, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है। और जो हजारों यात्री रेल और गाड़ियों के माध्यम से यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं उनकी तादाद हजारों में है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसको किस तरह से सीमित तादाद में ही आगे भेजा जाए और रजिस्ट्रेशन के साथ भेजा जाए ताकि आगे भी इंतजाम, पहाड़ों में भी ये इंतजाम रखा गया है, जो इंतजाम यहाँ है, खाने पीने के लंगर है, रहने की व्यवस्था है, अलग अलग पड़ाव पर आपको जो तीर्थ यात्री है वो रोकने भी है, उनको खाना भी खिलाना है, उनको बाथरूम की सुविधा भी देनी है, उनको बहुत सी और जो आम जीवन में सुविधाएं होती है वो सब आपको देनी है और आगे यात्रा भी चलानी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो जो निर्देश है उसकी अवमानना ना हो, उसी को लेकर ये तीर्थ यात्रा फिलहाल 9 तारीख तक बंद, ताकि जो रश ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड जो तीर्थ यात्री जम्मू में ऑलरेडी है उनको पहले आगे भेजा जाए, जब वो लौट कर वापस आएंगे और साथ साथ जो हर दिन लौट भी रहे हैं, हर दिन जा भी रहे हैं, तो जो रश पीछे से आ रहा है, चाहे लखनपुर से आ रहा है, चाहे रेल के माध्यम से आ रहा है, ट्रांजिट कैंप से आ रहा है, तभी उनको आगे भेजा जाए।
1: बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और हम प्रशासन का और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप हम तक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो तीर्थ यात्री हैं उन तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आपका और प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, हमारी कोशिश है कि तीर्थ यात्रियों तक वो बात पहुंचे जिससे उनके लिए भी एक आसानी हो, ताकि इंतजामों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ रहने खाने पीने और आगे किस तरह से प्रशासन ने फैसले भी किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचानी है, ताकि किसी तरह का जो कंफ्यूजन है, किसी तरह की जो मिसकम्युनिकेशन है आपसी इस पूरी बड़ी यात्रा में वो ना हो, और हमारी और आपकी ये कोशिश है कि वो उस कम्युनिकेशन को हम बेहतर बनाएं और तीर्थ यात्रियों तक बेहतर बात पहुंचे और आगे वो अपना जो सफर है वो उसी हिसाब से प्लान भी करें।
1: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब जो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्या कुछ रहा कल के दिन के हवाले से हाल और आज कितने यात्री और किन किन मार्गों से घाटी की तरफ रवाना किए गए, और साथ ही इन्होंने बात की जो मैनेजमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और जो आगे आने वाले जो दिन हैं उनके हवाले से जो प्रशासन है वो किस तरह के कदम उठा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रशासन ये चाहती है कि क्राउड ना हो, लोगों में इंतशार ना फैले, जो यात्री हमारे जो मेहमान हैं उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, उन्हें किसी किस्म की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनके सभी के लिए एक जैसे इंतजाम प्रशासन कर पाए। और हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि किसी किस्म की शिकायत ना आने पाए, क्योंकि ये हमारे मेहमान होते हैं, ये एक पवित्र सफ़र के लिए आए होते हैं, पवित्र एक मकसद लेकर आए होते हैं जिसमें हमें चाहिए कि इनकी भरपूर मदद करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, भक्ति संगीत सुनते रहिए, हम आगे भी आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं।

0: जी श्रोताओं, इसी बीच हमारे साथ हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं, रामबन के बल्कि मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्कीन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम आज के इस ट्रांसमिशन में। जी, क्या है आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हाईवे के हवाले से, और जो मौसम में तब्दीली हमें कल रात से देखने को मिल रही है, क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं इस हवाले से?
1: छत्ता बेच है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होकर वादी कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त श्री अमरनाथ यात्रियों का बाल तल से 181 गाड़ियां हमारी आ रही हैं, जिनमें 3,989 यात्री सवार हैं, और बस कुछ टाइम के बाद करीबन आधा घंटा 20 मिनट में ये काफला जो है बानहाल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इनको बानहाल में ही रुकना है। जम्मू से सीधे आकर बानहाल में ही रोका जाता है, रामबन में इनको चंद्रकूट में रोकने की इजाजत नहीं है। जबकि पहलगाम का जो काफला है 182 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, 4,826 यात्री है, और ये अभी कुछ वक्त पहले चंद्रकूट के जो उनके लिए जो लंगर वगैरह कायम किए गए वहां पर अभी पहुंचा हुआ है। तो कुल मिलाकर आज जो बहुत बड़ा जो यात्रियों का जो तैदाद है इसके आज के काफले में, ये कुल मिलाकर दोनों काफलों में 363 गाड़ियां हैं और 8,815 यात्री आज सफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कल रात जो कट ऑफ टाइमिंग नेशनल हाईवे पर रखी गई है यात्रियों के लिए और टूरिस्ट के लिए, तो उसमें करीबन रामबन में 2,000 से जायद यात्री थे जिन्हें रोका गया था वहां पर यात्रा निवास में। तो इसी तरह बानहाल में भी करीबन 2,000 के करीब जो गाड़ियां थी जो कल 3 बजे यहां पहुंची थी, और 3 बजे के बाद उन्हें कश्मीर में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जाती सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इसमें टूरिस्ट गाड़ियां हैं और यात्री हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उन्हें 3 बजे के बाद बानहाल से आगे बढ़ने की, तो यहां भी करीबन 2,000 यात्री रात को हाल्ट रहे, तो उन्हें भी आज सुबह वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया जा रहा है। इस दौरान कल रात से और हल्की हल्की बारिशें हुई और कुछ इलाकों में तेज बारिशें हुए, तो उन बारिशों की वजह से गरज चमक के साथ जो बारिशें हैं, तो उसमें जो मौसम है इस वक्त अगर कहेंगे हम बानहाल में तो हल्का हल्का ठंडा मौसम है, तो अलबत्ता रामबन का जो इलाका कदरे गर्म रहता है बानहाल के मुकाबले में, तो उस इलाके में आज सुबह से मौसम बहुत खुशगवार है और इसका बहुत मजा ले रहे हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हजारों की तैदाद में वादी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, तो उनको मौसम भी एक वेलकम दे रहा है अपने ये जो खुशगवारियत के साथ।
0: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो मौसम में कल से हम भी एक बदलाव देख रहे हैं, इसको ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। और तस्कीन साहब, आपके पास कोई नई एडवाइजरी है, जो हुक्मनामा है जो प्रशासन के जरिए आम लोगों के मफाद में जारी किया गया हो?
1: बिल्कुल, ये एडवाइजरी रोजाना ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी की जाती है, तो जो कल रात एडवाइजरी जारी

ही करते हैं कि इन ट्रैफिक हुक्मनामों का, इन कवानीन का सब लोग एहतराम करेंगे और इन पर अमल करेंगे। आप हमारे साथ अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी सुझाव हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए। टेलीफोन नंबर 9596990954 पर। आप ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, akashvanibaltal@gmail.com। और जो सूबे जम्मू और श्रीनगर के लिए प्रशासन ने दो टोल फ्री नंबर्स शाया किए हैं अवामी मफाद में, वो भी आप नोट करते जाएं। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-180-7199, और इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-180-7198। आप इन टेलीफोन नंबर्स पर राबिता कायम करके अपनी कोई शिकायत, अपना कोई सुझाव या अपना कोई मशवरा हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारा विशेष प्रसारण सुनते रहिए। हम श्रीनगर के हमारे जो संवाददाता इमरान नायकू, उनके साथ जुड़ने की कोशिश में हैं। उनके साथ जो ही हमारा राबिता होता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।

0: जी श्रोता हूँ, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायक जुड़ चुके हैं, और इनसे हम सबसे पहले तो इनका खैर मकदम करते हैं आज के ट्रांसमिशन में। और सबसे पहला सवाल हमारा इनसे ये रहेगा कि कल के दिन के हवाले से जो अपडेट्स, लास्ट अपडेट्स आपके पास आई वो क्या थी, और आज के दिन का जो आपके पास लेखा जोखा है वो हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएँ।
1: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चूंकि श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रियों की जो आमद है, उनकी जो अराइवल है वो जारी है, और कल भी पूरे दिन सुबह से ही जो है यात्री यहाँ ट्रांजिट कैंप पहुंचे, और मुतअद्दिद यात्रियों को कल सुबह ही

अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया और जिसमें बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन और साधु साध्वी शामिल थी। कुछ ट्रांसजेंडर्स भी थे और इसके अलावा कुछ बच्चे भी शामिल थे। और कल शाम को यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के दो जत्थे पहुंचे हैं, जिनमें अमरनाथ जी यात्रियों में कुछ बुजुर्ग भी थे और खासकर इसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखने को मिली। और आज सुबह उन्हें दर्शन के लिए रवाना किया गया है सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच में। और मुसलसल ये जो यात्रियों की यहाँ आमद है श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में, वो जैसे मैंने कहा कि पहले दिन से जारी है और ओवरऑल जो है बड़े ही पुरअमन और पीसफुल मैनर में यहाँ यात्रियों की आमद लगातार जारी है। और इस सिलसिले में जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनका यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ ट्रांजिट कैंप का जो मेन गेट है यहाँ पर ही अंदर जाने से पहले उनके बाजब्त तौर पर जो है प्रॉपरली उनके कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह देखी जा रही है। और ट्रांजिट कैंप के अंदर सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, जिसमें खाने पीने के जो है यहाँ पे एहतमाम किया गया है, यहाँ लंगर लगाया गया है, कम्युनिटी किचन यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो लंगर और जो किचन है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है कि जो फूड क्वालिटी है उसको देखा जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है वो रखी गई है एवं उसको भी चेक किया जा रहा है। और सारी जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है तो उसका गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो आ रहे हैं और उसका जो है वो मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों के साथ ऑफिशियल्स जो है वो मिलके उनकी जो प्रॉब्लम्स या उन ओवरऑल उनके एक्सपीरियंस को जान रहे हैं। सो ओवरऑल श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में पहले दिन से ही ये सिलसिला जारी है और यात्रियों के लिए जिस तरीके की फैसिलिटीज और बहुत सारी यात्रियों से हमारी मुसलसल बात हो रही है और हम यात्रियों से पूछ रहे हैं कि यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ जिस तरीके से सिक्योरिटी एहलकार तैनात है वो किस तरीके से यात्रियों के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या यात्री उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें या लोकल्स किस तरीके से। सो ओवरऑल अभी तक इस तरीके की कोई यात्रियों से वो शिकायत नहीं मिली है कि हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से यात्रियों के लिए ऑनलाइन भी जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म रखा गया है और इसके अलावा ट्रांजिट कैंप के अंदर भी एक ग्रीवेंस जो सेल है वो एस्टैब्लिश किया गया है, काउंटर एस्टैब्लिश किया गया है, सो दैट अगर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत हो, किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई असिस्टेंस उनको चाहिए तो विद इन नो टाइम या इमिडिएटली उनकी वो जो असिस्टेंस है उनको दी जाती है। और ओवरऑल ये जो यात्रा है श्रीनगर से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यात्री पहुंच रहे हैं और यहाँ से यात्रियों को फिर अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। चूंकि फ्लो बहुत ज्यादा है और इसलिए एक दो चीजें जो यात्री हमसे पूछ के कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बहुत सारी, तो उसकी वजह यही है कि काफी तादाद में जो है यात्री देश के कोने कोने से, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए। और ओवरऑल बाकी जो फैसिलिटीज है, अरेंजमेंट्स है, वो यात्रियों के लिए जो रखी गई है उस हवाले से हर एक यात्री ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है और गवर्नमेंट को हमेशा वो शुक्रिया अदा करें जिस तरीके से उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। और मौसम भी आज श्रीनगर में बिल्कुल सुहाना है। अभी चूंकि इस वक्त 7:51 हुए हैं और धूप खिली हुई है और आज ठंडी हवाएं भी चल रही है और मौसम का बेहतर होना भी यात्रा के पार्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसलिए मौसम का हाल भी यही है कि मौसम बेहतर है और इस बेहतर मौसम के बीच में अमरनाथ जी यात्रियों को गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है और कई सारे यात्री भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है, कुछ डोज एंड डोंट्स दिए गए हैं और बार बार यात्रियों से गवर्नमेंट की तरफ से यही एक अपील है कि गवर्नमेंट की एडवाइजरीज, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस या गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत दी जाती है उनको फॉलो करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और ताकि जो यात्रा है स्मूथली कंडक्ट हो और यात्रियों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और दूसरा ये कि जो हम मुसलसल कह रहे हैं कि इस पूरी यात्रा को श्रीनगर के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो कि HMT श्रीनगर में एस्टैब्लिश किया गया है और यहाँ इस कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है, इसकी सर्विलेंस की जा रही है और इसमें मोर देन 25 जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें पुलिस है, ट्रैफिक

0: पुलिस है, ITBP है, आर्मी है, यानी सिक्योरिटी के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनके काउंटर्स यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट हमारे, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो R&B डिपार्टमेंट हो, इसी तरीके से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग जो
1: ब्रांचेस होते हैं, जी बिल्कुल।
0: कहें सो सर्वेलेंस ये की जा रही है कि पूरी यात्रा में कहीं किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ गुफा से लेके पूरे इस जम्मू तक जो है इस यात्रा, खासकर कश्मीर में जितने भी रूट से इस यात्रा के, उसको नजर रखी जा रही है, सो दैट अगर कहीं किसी यात्री को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो विद इन नो टाइम डिपार्टमेंट्स अब दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और उनकी असिस्टेंस की जाती है। और इसलिए अभी तक हम देख रहे हैं कि यात्रा बड़े ही खुश अस्तूबी के साथ जारी है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि मुसलसल जहाँ पे भी आप देखेंगे, वो चाहे श्रीनगर सिटी हो या फिर बाकी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं, या रूट्स पे जहाँ पे भी आप देखेंगे यात्री यात्रा को लेके बात करें, तो सभी यात्रा पर अपने इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह उनके लिए कि एक बड़ी खुशी की है कि वो यात्री जो यहाँ पहुंच के यहाँ अमरनाथ जी गुफा का दर्शन करते हैं, और जिस पर वो इसे अपने लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं।
1: जी इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए।
0: शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू बात कर रहे थे, और इन्होंने ये बताया कि जो प्रशासन के द्वारा मुख्तलिफ निर्देश दिए जाते हैं, हुक्मनामे दिए जाते हैं, यात्रियों से गुजारिश है कि उन हुक्मनामों पर, उन एडवाइजरीज पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि ये सब उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं की सुविधा के लिए किया जाता है, ताकि ये यात्रा जो है, ये सफ़र जो पवित्र सफ़र है, ये जम्मू से लेके पवित्र गुफा तक और वापसी का रास्ता जो है, इसमें उनको किसी किस्म की कोई कठिनाई ना हो, कोई मुश्किल ना हो, ये सब इसीलिए किया जाता है। और हमारे जो लोकल लोग हैं, हमारा जो प्रशासन है, वो इसीलिए इस वक्त खड़ा है, अपना काम कर रहा है, ताकि आप सबको कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। और साथ ही में हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तक ताज़ातरीन इन्फॉर्मेशन, ताज़ातरीन अपडेट्स पहुंचाते रहें। फ़िलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द लौटते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने

जी श्रोताओं, 2024 की अमरनाथ यात्रा का स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारा ये साथ आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल खबरों के लिए रुकते हैं और दिल्ली चलते हैं और सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में दिल्ली से खबरें।

0: बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी।

0: इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान

0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह। मैं हूँ आपका मेज़बान मेराजुद्दीन और आज मेरे साथ है
3: तस्लीमा।
2: जी तस्लीमा, आज 7 जुलाई है
3: जी।
2: तारीख के अवराक पलटते हैं और देखते हैं आज के दिन तारीख में कौन से अहम वाक़ात रोनमा हुए हैं।
3: जी बिल्कुल, पलटते हैं। अगर आज की बात करें 7 जुलाई की, आज ही के दिन 1998 में सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर सलामी जोड़ी ने एक रोज़ा बैन अक्वामी क्रिकेट में 252 रनों की इफ्तिताही पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
2: जी सन 2005 में लंदन के ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर भीड़ भाड़ के अवकात में हुए 7 सिलसिलेवार बम धमाकों में कम अज कम 45 लोग हलाक और 1000 दीगर जख्मी हो गए।
3: आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 2011 ईस्वी में हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी फिल्म हैरी पॉटर और डेथली हैलोज पार्ट 2 का लंदन में प्रीमियर हुआ।
2: 7 जुलाई 2012 ईस्वी को आज ही के दिन रूस में शदीद सैलाब से 140 अफराद हलाक हुए।
3: और सन 2013 मैं आज ही के दिन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर एंडी मरे साल 1936 के बाद इस खिताब पर कब्जा जमाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने।
2: मुंबई के वाटसन होटल में फ्रांस की ल्यूमर की टीमों ने पहली सिनेमाटोग्राफिक
4: to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya Group comprising Indonesian students.

0: Indonesian president, specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency charge sheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in the Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it, while the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals, including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने इस्तकबाल को नहाय शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया।

0: इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-आज़म मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वज़ीर आज़म मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वज़ीर आज़म मोदी के तीन मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की 100 साला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत की सुलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों की 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके

0: मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और पीओके में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खिदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्ज़ाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुँचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है, जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहली अजला और शुमारी महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतज़ामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीम को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ख्वातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई। फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है।

0: रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में NIA की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा DTH के साथ साथ हमारा ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी उपलब्ध है। हमारे साथ जुड़ी रहिए, हम आप तक आपके समक्ष ताज़ा तरीन जानकारियाँ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं। फ़िलहाल आज दिन के आगाज़ में जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में कुछ यात्री पहुंचे हैं, उन्होंने हमारे साथ बात की, उनका क्या कुछ कहना था ये आपको भी सुनवाते हैं।
3: जी, मेरा नाम बबीता रानी है और हम दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हम फर्स्ट टाइम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और बस यही मनोकामना मान के आए हैं कि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाए। तो बेस्ट टाइम बस ये कि भीड़ होने के कारण या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एकदम से पब्लिक, सैटरडे और संडे ऑफलाइन हो गया तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हुई बट कहते हैं ना जंग जीत ली। बहुत अच्छा लगा, कश्मीर वाकई में बहुत देखने लायक चीज है, बाकी पहाड़ियाँ सदाबहार बहुत अच्छा लगा।
4: मेरा नाम गीता है और मैं दिल्ली फरीदाबाद से आई हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मैं एक बार अपनी लाइफ में बाबा जी के दर्शन पालूं बस, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज वो मनोकामना भी पूरी हो गई है क्योंकि जंग जीत कर आ रही हूँ।
5: अच्छा,
4: बहुत बहुत सुंदर है यहाँ, हर चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
6: अजय लोहिया नाम है मेरा और अभी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी हम, और हम रास्ते से 2-3 दिन से परेशान होते हुए आ रहे हैं। बहुत ज्यादा रस हो रहा है यहाँ पे आने का, हमारे बाबा जितनी परीक्षा लेंगे उतना ही आनंद आएगा आगे जाके। बाबा के दर्शन हो जाए तो आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत अच्छा वो होगा।
5: प्रशासन
6: का बड़ा ठीक उसमें वो लगा है, प्रशासन की कोई वो नहीं है, प्रशासन धीरे धीरे करके भेज रहे हैं जो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे ऊपर, मगर बहुत अच्छी उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई हुई है।
7: मेरा नाम है स्वामी स्वधर्मानंद, मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम का रहता हूँ जो बेलूर मठ का हेड ऑफिस है। तो रामकृष्ण मिशन मेरा बिहार में पोस्टिंग है, मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ अभी अमरनाथ दर्शन के लिए। तो अभी जा रहा हूँ बलताल होके, 3 दिन इधर रुकने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, तब बड़ी खुशी के बाद है बाबा का दर्शन के लिए। तो बस तो अभी निकल गया कन्वे वाले, तो अभी गाड़ी पकड़ ले रहा हूँ, तो बलताल में आज रुकूंगी, कल सुबह मेरा दर्शन का टाइम है तो कल सुबह दर्शन के लिए निकल जाऊंगा।
2: जी श्रोताओं, आपने हमारे चंद जो मेहमान हैं यात्री हैं उनके तासुरात सुने। बड़ा ही प्रसन्न होता है मन जब हमारी कोशिशें, हमारी काविशें, हमारी जो भी मेहनत है उसको सराहा जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है। और हमारा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि सभी यात्रियों के लिए उचित से उचित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी जाएँ ताकि इनको किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो। फिलहाल हमारे पास जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है सुबह 8 बजे तक का, उसके मुताबिक आज सुबह के 8 बजे तक

0: कुल मिलाकर 1290 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर पावन शिवलिंगम के दर्शन किए थे, जिनमें से 990 पुरुष, 2240 महिलाएं, 22 बच्चे, 7 साधु, 1 साध्वी और जो सुरक्षा कर्मी है उनके जो तादाद है वो 30 के करीब बताई जा रही है। और 1290 हमने जो आपको बताया आंकड़ा, सुबह 8 बजे तक का जो दर्शक, जो तीर्थ यात्री पवित्र गुफा में जाकर दर्शन पा चुके थे और वो अभी वापसी के रास्ते पर आ रहे हैं। फिलहाल हम अपने संवाददाताओं से जो बातचीत है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। हम अपने जो संवाददाता है रहीम रिजवान, जो हमारे साथ जुड़ते हैं गांदरबल से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि जो गांदरबल है उसमें जो है क्या कुछ इंतज़ाम हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ माहौल है। मौसम के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
0: जी। हमें बताइए क्या कुछ रहा पिछले दिनों अहवाल पहलगाम में और आज के दिन के हवाले से आपके पास क्या है ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स?
1: जी, अगर हम बाल्टमार्ग की बात करेंगे तो बाल्टमार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो बड़ी खुश असलूबी से जारी है। 57 रोज जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा बाल्टमार्ग से धार्मिक रूप से जारी है। इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ यात्री घाटी आगमन हो रहे हैं तथा इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किस तरह बड़ी मात्रा में बाबा बर्फानी के भक्त देश के विभिन्न भागों से पवित्र गुफा जाकर स्थापन पर माता टेकते हैं तथा प्रार्थना करके देश एवं घाटी की अमन शांति एवं विकास के लिए प्रार्थना करते हैं। बीते दिनों की तरह आज 5वें रोज भी बाल्टमार्ग से सुहाने मौसम के बीच 12613 यात्री बम बम बोले जय बाबा बर्फानी का नाद करते हुए बालतल बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना हुए। सुबह 4 बजे दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले श्रद्धालु में 9073 पुरुष, 3194 महिलाएं, 103 बालक बालिका, 26 साधु, 13 साधिया एवं 204 सुरक्षा कर्मी शामिल है। यात्रियों को बीती रात 2 बजे से ही पवित्र गुफा जाने की काफी उत्साह थी एवं वे RFID कार्ड हासिल करने के लिए कतारों में दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते थे।
0: जी।
1: सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती रात 10 बजे तक 26837 श्रद्धालुओं ने गुफा जाकर माथा टेका, प्रार्थना की तथा शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 18520 पुरुष, 7418 महिलाएं, 223 बालक बालिका, 186 साधु, 52 साधियां, 5 ट्रांसजेंडर एवं 433 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। यात्रियों को सुरक्षित पवित्र गुफा तक पहुंचाने तथा दर्शन करके वापस लाने के लिए जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं वहीं प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर भोजन, पानी, बिजली, शौचालय, चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। व्यवस्थाओं को लेकर यात्री काफी संतुष्ट थे। श्रोताओं, हम बाल्टमार्ग से पल पल की खबरें खासकर मौसम के बारे में सूचना देते हैं क्योंकि यहाँ मौसम हर पल बदलता रहता है, कभी धूप खिलती है तो कभी वर्षा होती है, लिहाजा पवित्र सफर के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट एवं अच्छे जूते साथ रखना ना भूलें। सफर आराम से करें क्योंकि इस क्षेत्र का वातावरण मुख्तलिफ है। दुमेल कंट्रोल गेट से आपको ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करना है, लिहाजा पवित्र सफर के दौरान सब्र तहमुल से काम लें एवं पंजीकरण करके ही सफर करें। पंजीकरण किए बगैर आपको गुफा जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा संपूर्ण तरीके से सफल हो जाए। जी
0: जी, मौसम के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मौसम कैसा है और आगे आने वाले जो 24 घंटे हैं उसके लिए आपके पास क्या एडवाइजरी है?
1: मौसम विभाग के अनुसार जो एडवाइजरी जारी की जाती है इस हवाले से अगर हम देखेंगे तो बालतल से पवित्र गुफा तक का मौसम है वो एक जैसा नहीं रहता है और वो पल पल बदलता रहता है। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि जो ही सुबह सवेरे यहाँ अबर आलूद होता है मतलब पूरा, तो धीरे धीरे धूप भी खिलती है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं और इसके साथ साथ बीच में 1 बजे 1:30 बजे के करीब यहाँ रोज वर्षा होती है, हल्की वर्षा, कभी तेज वर्षा भी होती है, लेकिन इसके साथ ही बिल्कुल मौसम ठीक होता है और यात्री जो है वो इन ताजा हवाओं का आनंद लेते हुए पवित्र गुफा के

0: तरफ रवाना हो रहे हैं और दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं।
1: जी, जैसा कि हमने आज भी देखा कि घाटी में रात के दौरान कई एक जगहों पर हल्की बारिश हुई, और जैसा कि आपने बताया था कि कुल तादाद जो है यात्रियों के जिन्होंने दर्शन किए थे कल शाम तक, क्या वो आंकड़ा आप हमारे लिए एक बार फिर से दोहराएंगे?
0: जी हाँ, अगर हम कल की बात करेंगे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो बीती रात 10 बजे तक की बात हमने की है, क्योंकि शिवलिंगम का दर्शन करके गुफा से यात्रियों का वापस आना देर रात गए तक जारी रहता है, तो एक एक घंटे के बाद बिल्कुल हम अपडेट करते रहते हैं। तो इस हवाले से हम कहेंगे कि 24,837 श्रद्धालुओं ने कल गुफा जाकर माथा टेका, प्रार्थना की और शिवलिंगम के दर्शन किए। तो अगर फिर हम अपने श्रोताओं को बताएंगे तो इन यात्रियों में 18,520 पुरुष, 7,418 महिलाएं, 223 बालक बालिका, 186 साधु, 52 साधियां, 5 टनस जनरल एवं 433 सुरक्षा कर्मी थे।
1: जी, खाने पीने के हवाले से या जो बाकी सुविधाएं उनको बालतल में दी जाती हैं उनके हवाले से क्या किसी शिकायत का कोई शिकायत आपको मौसूल हुई, या किसी किस्म से हमारे जो यात्री हैं वो उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय क्या है?
0: जी हाँ, बहुत सारे यात्रियों से हमने बात की है। तो पहले भी मैंने बताया जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो जगह जगह लंगर लगाए। अगर हम ट्रांजिट कम मैनगांव, ट्रांजिट कम शादीपुरा भी इसी एरिया में आता है उसकी बात करेंगे, या बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक जो बहुत सारे मकाम आते हैं वहां पे मुफ्त लंगर लगाए गए हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं और विश्राम, रात्रि विश्राम के लिए भी उनके लिए अच्छी तरह जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी गई हैं। हालांकि वहां का पानी जो है बिल्कुल सुबह सवेरे ठंडा होता है, तो गर्म पानी जो है उसकी सुविधाएं भी वहां पे उपलब्ध रखी गई हैं। लिहाजा अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत सारे मकाम पर, अगर हम काली मथा, बरारी मार्ग, लोअर केव, अपर केव, पांच तने या बालतल बेस कैंप की बात करेंगे तो बड़े 4 हॉस्पिटल्स यहाँ कायम किए गए हैं, और इसके साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे तिबी मराकज जो यात्रा रूट है। अगर हम श्रीनगर कारगिल राजमार्ग की बात करेंगे तो शादीपोरा से आगे ही बढ़कर हर जगह हमें छोटे छोटे सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनको भी चाको चौबंद रखा गया, मुतहरिक रखा गया है, ताकि अगर किसी भी वक्त जरूरत पड़े यात्रियों को तो वहाँ इलाज मुआवजा कर सकते हैं, और उनमें मुफ्त अदवियाएं भी फराहम उन्हें की जाती है और दीगर सहूलियात भी। और इसके साथ साथ ट्रांजिट कैंप जो हमारे हैं वहां पे रुकने के लिए इनको कहा जाता है, तो वहां रात्रि विश्राम के लिए भोजन, शौचालय और दीगर व्यवस्थाएं जो है बाजब्ता तो रखी गई हैं, और यही सूरत हाल हम देखेंगे शादीपोरा से लेके पवित्र गुफा तक, यानी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना इन यात्रियों को ना करना पड़े। और साथ ही हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं, जो हमारे जिला प्रशासन खासकर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्री जतिन किशोर, SSP गांधर सुधांशु दामा जो बाजाब्त और इसकी निगरानी बालतल में कर रहे हैं, और वो अभी बालतल में ही है, कायम पजीर है, वहां खुद निगरानी कर रहे हैं पूरी यात्रा की। तो इसके साथ साथ जो हमारे दीगर जिला अफसर हैं वो भी आजकल बालतल में ही मौजूद हैं, और वो बाजाब्त और इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो अच्छी तरीके से उपलब्ध रखी जाए।
1: जी, इसका मतलब कि जो प्रशासन है वो चाको चौबंद है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार है और कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं।
0: इसके साथ साथ अगर डिजास्टर की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, BSF, ITBP, SSB, NDRF, SDRF के अलावा जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी चाको चौबंद रखा गया है, ताकि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले प्रशासन बिल्कुल तैयार है। तो अभी तक की बात अगर हम करेंगे, बिल्कुल यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है। यात्री जो देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होते हैं वो गुफा की तरफ जाकर दर्शन करके सुरक्षित वापस आते हैं, और दर्शन करने के बाद बालतल बेस कैंप जो ही वो पहुंचते हैं तो रात्रि विश्राम के बाद सुबह सवेरे उनको अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ कड़े सिक्योरिटी के बीच रवाना किया जाता है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, आपसे आगे भी बात होती रहेगी, आपका शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: हमारे साथ रहीम रिजवान जुड़े हुए थे जो हमारे गांधरबल के संवाददाता है। आकाशवाणी FM बालतल और FM पहलगाम से आप इस वक्त सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आप हमारे साथ जुड़े

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना सर्विस हमारी OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, और हम उपलब्ध हैं DTH पर भी। हमारे संवाददाताओं के साथ बातचीत जारी है और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हैं उनके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स। आपको चलते चलते ये भी बता दें कि कल दिन की समाप्ति तक, जो रात के 10 बजे तक हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है, उसके मुताबिक कुल मिलाकर 26,837 जो तीर्थ यात्री हैं, उन्होंने कल शाम के 10 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जो दोनों मार्ग यानी कि जो बालतल मार्ग और पहलगाम मार्ग है, दोनों रास्तों से जाकर ये अपना सफ़र पूरा किया है और बाबा बर्फानी के दर्शनों से वो सराबोर हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे संवाददाता एस तारिक जुड़ चुके हैं, जो अनंतनाग से हमारे साथ बात करते हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: हाँ जी बिल्कुल, सभी श्रोताओं को पहले मेरा सुप्रभात। खुशगवार मौसम के बीच बाबा श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा अस्था सफलता और सुखद तरीके से जारी है। बुलंद बाला हिमालय के वादियों के आगोश में शिव भगत बम बम बोले और हर हर महादेव के जय जयकारों के साथ अपना रूहानी यात्रा जारी रखे हुए हैं। आस्था से भरे इस यात्रा में आज सुबह 4 बजे नुनादार शिविर से तकरीबन 5,000 यात्रियों के अलावा निजी होटलों और हटस में मुकीम दीगर भक्तों का जत्था चंदनवारी पहुंचा, जहां यात्री पंचकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यात्रा का एक विशेष IRF डी कार्ड जो होते हैं, जहाँ फराम किए जाते हैं, जिनकी मदद से यात्रियों की नक्ल हरकत पर नजर रखी जाती है और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। तो चंद्रवाड़ी से यात्रा फिसलन, पिशोटाप, जोजबल, नागाकोटी और महागुनस्टाप जैसे दुश्वार गुजार रास्तों से होते होते शीशनाग और पंचतरनी की जानब अपना पैदल यात्रा जारी रखेंगे। दूसरी जानब शीशनाग और पंचतरनी में रात गुजारने वाले यात्री आज सुबह पवित्र अमरनाथ गुफा के जानब रवाना हो चुके हैं और वो मुकर्रर वक्त पर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। रिवायती घोड़े बांध पोनी वाले और पालकी बरदार भी यात्रियों की आमद रफ्त और सहूलत में बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 363 छोटी बड़ी वाहनों पर मुश्तमिल 8,815 यात्रियों का काफिला घाटी की जानिब रवाना हो चुका है। ये काफिला दोपहर तकरीबन 12 बजे से पहले पहल काजगुंड जो वहाँ ट्रांजिट कैंप है हमारा, वहां पहुंचेगा, जहां से बालतर और पहलगाम के लिए अलग अलग जथे रवाना किए जाते हैं। इसमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 182 गाड़ियों पे लगभग 4,826 यात्री शामिल है, जिनमें 3,461 पुरुष, 1,044 महिला, 250 साधु, 64 साध्वी और 7 बालक भी शामिल हैं। ये काफिला सकल सिक्योरिटी के दरमियान पहलगाम पहुंचेगा, जहां यात्री भजन पूजा और आरती के बाद नुनवन बेस कैंप में रात का विश्राम करेंगे। अगर आप तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या की बात करें तो सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 3 जुलाई से कल शाम तक 80,000 से जायद यात्री दर्शन का सौभाग्य हासिल कर चुके हैं, जबकि सिर्फ बीते रात 24,000 से ज्यादा यात्रियों ने एक पवित्र गुफा में दर्शन किए। इस बरस रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्का है। प्रशासन की जानिब से नुनवन बेस कैंप और पूरे यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए तमाम आवश्यक सुविधाएं मुहैया की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मेडिकल टीमें हर कैंप और पूरे ट्रैक में मौजूद है, ताकि किसी भी आकस्मिक सूरत हाल से पूरी तौर पर निपटा जा सके। यात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह साइन बोर्ड और हेल्प डेस्क कायम किए गए, जहां यात्रियों से मुतालिक आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन फराहम किया जा रहा है। अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त यात्रा ट्रैक पर मौसम अब आलूद है और बैज मुकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिशें भी रिकॉर्ड की गई, तहम यात्रा खुशगवार माहौल में जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त पहलगाम से पवित्र गुफा तक दर्जे हरारत तकरीबन 14.5 डिग्री सेल्सियस है। कुदरत

0: आफात और खराब मौसमी हालात से निपटने के लिए पहले ही जदीद डॉपलर वेदर रडार्स को फाल रखा गया है, जो बालतर और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी मौसम की मुसलसल निगरानी कर रहा है।
1: जी
0: इस महत्वपूर्ण यात्रा की कामयाबी इनेकाद और बेहतरीन व्यवस्था को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी विभाग हर पहलू पर बारीकबीनी से नजर रखे हुए हैं और बाबा श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा सुखद, सुरक्षित और मुनज्जम अंदाज में मुसलसल जारी है। श्री अमरनाथ जी की ये जो वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से आरम्भ हुई है, ये श्रावण पूर्णिमा के जो पावन अवसर पर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा को यकीनी बनाने के लिए पूरे यात्रा मार्ग में सुरक्षा के सख्त इंतजाम और यातायात की विशेष व्यवस्था बरकरार रखी गई है। जी
1: जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए। उम्मीद रखेंगे कि जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं, जो इकदाम उठाए जाते हैं, उनसे हमारे जो शिव भक्त हैं वो खुश होंगे और इनका ये जो सफर है वो बहुत ही आसानी से कटेगा।
0: अभी तक जो भी हमने देखा है, जो भी हमने शिव भक्तों से हमने मिलने का जो हमें मौका मिला है, और उनके चेहरे देख के, उनकी जो गुफ्तगू देख के या उनकी जो हरकत सकना देख के, ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल जो इंतजामिया है, ये जो प्रशासन है, उनके जो इंतजाम किए हुए इंतजाम पे बहुत ही खुश है, बहुत ही मुतमईन है।
1: जी बिल्कुल, अभी जो आपने रिपोर्ट भेजी थी उसके मुताबिक जो हमने प्रतिक्रिया सुनी, हमने जो यात्रियों की बात सुनी, उससे हमें भी यही लगा कि जो इस साल के इंतजाम हैं वो पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और यात्री इस सब से खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपका शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, आपसे आगे भी बात होती रहेगी।
0: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
1: धन्यवाद। ये थे हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक, जो जानकारी दे रहे थे जो कुल मिलाकर लेखा जोखा रहा कल दिन का और आज जो कुछ होने वाला है मौसम के हवाले से। इन्होंने बताया कि मौसम अभी फ़िलहाल अबर आलूदा है, लेकिन आज का मौसम ही ऐसा है, अभी जो मानसून का सीज़न चल रहा है इसमें कब बारिशें हों कब धूप निकले कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम जैसे अपने श्रोताओं के लिए, अपने यात्रियों के लिए बार बार ये बोलते रहते हैं कि यात्रा मार्ग पर जो है आप अच्छे जूतों का इंतज़ाम रखें, अपने साथ कोई रेन कवर साथ रखें या कोई गर्म कपड़ा अपने साथ रखें हल्का फुल्का सा, क्योंकि चलने के दौरान अगर आपका बैग जो कैरी बैग होता है वो भारी रहेगा तो आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है, काफ़ी दुश्वार है, क्योंकि दुश्वारियों के बाद ही इंसान को आसानियां दिखती हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि सभी जो तीर्थ यात्री हैं अपने जो हृदयों में वो सवाल लेकर आए हैं, जो कुछ मनोकामनाएं लेकर आए हैं वो उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और उनको उसका बेहतरीन फल मिले। फिलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द हाजिर होते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। और अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम तक अपनी कोई बात, अपने अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर आप हमें SMS या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। जी हाँ, 9596990954। इस पर आप अपना कोई भी सवाल, अपना कोई भी सुझाव, अपनी कोई भी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ईमेल आईडी भी है, जिस पर आप ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं। ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। इसके अलावा प्रशासन ने जो जम्मू और श्रीनगर के जो अजला हैं अलग अलग, उनके लिए दो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स इजरा किए हैं अवामी मफाद में, जिनकी मदद से आप प्रशासन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-180-7199। इसी तरह से जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-7199। जी श्रोताओं, जब हम बात करते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पर हम कैसे आएं और अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, और सबसे पहला जो काम होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक कार्ड मिलता है, RFID कार्ड, जिसकी बदौलत आप इस यात्रा का एक हिस्सा माने जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, आइए हम आपको बता दें। ये यात्रा जो है दुनिया की मुकद्दस तरीन मजहबी यात्राओं में शुमार की जाती है, और हर साल इसमें लाखों अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उस मुकद्दस कार का रुख करते हैं। अगर आप भी ये इरादा रखते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन पे आने का, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अस्पताल का एक कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जिसे CHC के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यात्रियों का सबसे पहले हेल्थ चेकअप होता है। देखा जाता है कि क्या वो जिस्मानी तौर पर इस हालत में हैं कि वो इतना कठिन और लंबा सफ़र कर पाएँ या नहीं। उसके बाद जो है यात्री अपनी सहूलियत के मुताबिक पहलगाम या बालतल का रास्ते का इंतखाब करते हैं और मतलूबा तारीख के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके साथ एक शिनाख्ती दस्तावेज़, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और सेहत से मुतालिक जो आपको सर्टिफिकेट पहले दिया जाता है CHC, वो आपके पास होना लाजमी है। और उसके बाद तैयार होता है आपका RFID कार्ड, जिसे पूरी यात्रा के दौरान आपके साथ आपको रखना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, कभी कोई मुश्किल आ जाए, तो आपके जो RFID कार्ड से आपका जो पता है, आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हासिल की जाती है, और आपके जो लवाहकीन हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनको मुतला किया जाता है। हमारी सभी तीर्थ यात्रियों के साथ उनकी समक्ष यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि इंतज़ामिया और इनकी जो श्राइन बोर्ड की मकामी हिदायत हैं उन पर अमल करें, क्योंकि अगर आप इन शराइत और लवाजिमात को पूरा नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और ख़ास करके हम इस ट्रांसमिशन में बार बार आपसे ये कहते हैं कि अपने सेहत और माहौल की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, और हमारी यही प्रार्थना रहती है कि ऊपर वाला आपको सलामत रखे, क्योंकि आपकी सलामती में हमारी खुशी है। क्योंकि जब आप सलामती से आएंगे, सलामती से वापस जाएंगे, तो हम काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आगे क्या कुछ होता है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे आगे। फ़िलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द लौटते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ख्वातीन हमेशा नारी शक्ति की बुलंद तरीन मिसाल कायम करती आई हैं, जिसकी बेशुमार काबिल तकलीद मिसालें मौजूद हैं। वो कल लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने के लिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है।
1: मैं कैसे जम्मू कश्मीर की कल्पना करता हूं जहां प्रत्येक बच्ची अपने बचपन से ही ये विश्वास लेकर के आगे बढ़े कि उसके सपने बड़े मूल्यवान हैं, उसकी आवाज प्रभावशाली है और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रयास हुए हैं। आइए हम इस सामूहिक संकल्प लें कि हम ऐसी व्यवस्था के निर्माण में भागीदार बनेंगे जहाँ प्रत्येक बच्ची को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक बेटी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिल सके और प्रत्येक महिला को नेतृत्व और निर्णय की प्रक्रिया में सम्मानजनक और गरिमापूर्ण भागीदारी मिले।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सर्विसेज में पेशेवराना तर्ज अमल और एहतसाब का उनसर पैदा करने में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट यानि इम्पार्ड के रोल को उजागर करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इदारा जाती असलाहत, आला मैार की तरबियत और इख्तियारियत को फरोग देने पर जोर दिया है। वज़ीर आला कल श्रीनगर में इम्पार्ड के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 13वीं मीटिंग की सदारत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का एक वफद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुआ। मुलाकात के दौरान वफद ने उन्हें पंजाब में लाइव स्टॉक लाने वाली गाड़ियों की नकलो हमल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वफद ने वज़ीर आला से इस बारे में उनकी ज़ाती मुदालकत तलब की। वज़ीर आला ने वफद को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए नीज ताजरों और सार्फीन के मफादात के तहफ़ के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफद जल्द ही पंजाब का दौरा करके करेगा ताकि तमाम मसाइल का हल तलाश किया जा सके। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई अवामी वफूद ने कल श्रीनगर में खुराक और उम्र सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा के साथ मुलाकात करके अपने मसाइल और मुतालबात उनकी नोट्स में लाए। वजीर ने लोगों के जायज़ मुतालबात हल करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की राहत रसानी के लिए वादाबंद है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी के साथ जारी है। यात्रा के पहले चार दिनों के दौरान लगभग 79,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 8,815 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला आज सुबह वादी के लिए रवाना हुआ। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि ये इस बरस की यात्रा का जम्मू से रवाना होने वाला अब तक का सबसे बड़ा काफिला है। दरियासना आज सुबह 8 बजे तक 1,290 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेवादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तसरुफ के लिए जवाबित में तरमीम की है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक मेंबरान असेंबली को मुहलिक बीमारियों में मुबतला मुस्तहिक मरीजों के लिए एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च करने का इख्तियार दिया गया है। हुक्मनामे में मुस्तहिक मरीजों के लिए शराइत वजह किए गए हैं जिन्हें

जी श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमारा ये विशेष प्रसारण DTH के साथ साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप इसका आनंद उठा रहे हैं। हम चंद मिनट पहले बात कर रहे थे जो रजिस्ट्रेशन का ये होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, यात्री को एक परमिट दिया जाता है और एक RFID कार्ड दिया जाता है, जिसका मकसद और मतलब यही होता है कि परमिट वो किस रास्ते से जाना चाहता है, वो किस रास्ते का इंतखाब करता है, चाहे वो बालतल मार्ग से जाना पसंद करे या जो है पहलगाम का मार्ग पसंद करे। उसके बाद एक तारीख मुकरर की जाती है और उन्हें बेस कैंप, जो बालतल में हमारा बेस कैंप है और नुनवन पहलगाम में एक और बेस फाइनल बेस कैंप होता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। इस दौरान बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी चेक होता है इनका, यात्रियों का भी, उनके सामान का भी, और सिक्योरिटी चेक के साथ साथ उनके दस्तावेज़ की जाँच होती है, उनका RFID कार्ड स्कैन होता है और बाकी जो भी लवाजमात होती हैं वो होती हैं। उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, जो उनको डेट मिलती है। यात्रा से पहले तो आपको कभी कभी एक दो दिन जो हमारे बेस कैंप्स होते हैं वहाँ पे रुकना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ रुकने के दौरान आपको किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ाम होते हैं, प्रशासन खड़ा होता है, बहुत सारे जो अमले हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो आपकी सहायता के लिए, आपकी खिदमत के लिए हमेशा वहाँ पे खड़े होते हैं, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका वो आपको नहीं देते। और इस दौरान जो आप रास्ते में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपको लंगर मिलते हैं जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, अपना नाश्ता जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, और आपकी सेहत का इसके दौरान बहुत ख्याल रखा जाता है। तिबी मराकज जो मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इसके बीच में जो आते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको उन हस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, मुफ्त इलाज आपका होता है। और उसके बाद क्या होता है कि मुकद्दस अमरनाथ यात्रा पर जब आप निकलते हैं बाबा बर्फानी की गुफा की जानिब, और आपको इस दौरान रास्ते में एस्कॉर्ट किया जाता है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो अमला होता है सिक्योरिटी का, वो आपको गार्ड करता है, क्योंकि रास्ते में कहीं खुदा नखास्ता आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और उसके बाद जब आप दर्शन करते हैं, दर्शन करके जब आप वापस अपने बेस कैंप वापस आते हैं, उसके बाद आपका फिर घर वापसी का सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ पर हम ये बात अपने श्रोताओं तक ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद जो यात्री मुकर्रर तारीख पर अपने मुंतखब करदा रास्ते यानी बालतल या पहलगाम के बेस कैंप पहुँचते हैं, जहाँ दस्तावेज़ात की जांच और सिक्योरिटी कार्रवाई के बाद उनको मुकद्दस अमरनाथ गार की जानिब यात्रा का बाकायदा हुक्मनामा मिलता है, इजाज़त मिलती है, और वो इस यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रशासन तक कोई बात, अपनी शिकायत अपनी पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे प्रशासन के द्वारा 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जम्मू और श्रीनगर अजला के लिए। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री नंबर रहेगा 1800 180 7199। इसके साथ ही अगर आप जम्मू में प्रशासन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात अपनी उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 7198। जी हाँ, आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हम तक अपनी बात पहुंचाते रहिए। हमारा भी एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप हमसे SMS या WhatsApp के ज़रिए बात कर सकते हैं और अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हो, मेल के ज़रिए हम तक पहुंचना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी रहेगा akashvanibaltal@gmail.com।

जी आश्रोता आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमने आपको ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट बताया जिसके मुताबिक 3,956 यात्रियों ने सुबह के 9 बजे तक जो है बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, जिनमें 2,820 पुरुष, 999 महिलाएं, 43 बच्चे, 26 साधु, एक साध्वी और 2 ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ 65 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 3,956 है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसे ही हमारे पास ताज़ा अपडेट्स इसके हवाले से आती हैं हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच हमारे जो बानिहाल के संवाददाता हैं मोहम्मद तस्कीन रामबन के, उन्होंने हम तक ये अपडेट पहुंचाया है कि जो श्रीनगर से लंगर पॉइंट चंद्रकोट रामबन में एक काफ़िला रुका हुआ था जो वापसी के रास्ते पर था, वो अभी वहाँ से जम्मू की जानिब रवाना हुआ। और हम इनकी सुखद यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं और ये कामना करते हैं कि जो भी इन्होंने दुआएं की होंगी, जो भी इन्होंने मनोकामनाएं लाई होंगी अपने साथ, उनकी वो सारी दुआएं, उनकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और जो आज आए हैं यात्रियों या जो आगे आने वाले यात्री हैं, उनके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। जी श्रोताओं, जी यात्रियों, इस सफ़र के दौरान आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सी दुश्वारियां आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही पहाड़ी इलाका है, इसमें जो मौसम का अचानक तब्दील होना, अचानक बदलना, वो एक स्वाभाविक बात है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है। तैयार किस तरह से? तैयार इस तरह से कि आपको अपने साथ जो है, आपको अपने साथ गर्म कपड़े रखने हैं, अपने बैग में एक बरसाती रखनी है, दस्ताने रखने हैं, और आपके जूते खासकर बहुत ही मज़बूत जूते होने चाहिए ट्रैकिंग के लिए, जो ज़रूरी हों, जिनमें फिसलन ना हो, जिनका जो तलवा है वो स्लिपरी ना हो, जिसमें फिसलन होने के कम से कम जो है मौके हों, कम से कम उसमें फिसलन हो। और जो पानी है, आपको पानी आपको मुनासिब मिकदार में पीते रहना है, क्योंकि इससे आपको तवानाई मिलती है, आपका वाटर लेवल सही रहता है। साथ में आपको छोटी मोटी जो गिज़ा हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वो भी अपने साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में आपको चलते चलते बहुत थकान महसूस हो सकती है, आपको एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत पड़ सकती है। जो ये सब चीज़ें हमने बताया आपको, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स या बिस्किट्स वगैरह, ये आपको धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको बरकरार रखने में आपको सहायता करेंगे आपकी। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, जैसे ही हम तक अपडेट्स पहुंचती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे भक्ति संगीत के लिए रुकते हैं, जैसे हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आती हैं हम आपको उनसे बाखबर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हम बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की, जो जाने के दौरान रास्ते में किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है। हमने उनके कपड़ों की बात की, हमने उनकी जो खाने पीने का सामान है उसकी बात की, अब उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए श्रोताओं, बुलंदी की वजह से अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपको चक्कर आता है या शदीद सरदर्द या तबीयत का किसी भी तरीके से ख़राब होने का अंदेशा मिलता है, आपको एहसास होता है, तो फौरन से जो नज़दीकी डिस्पेंसरी है, नज़दीकी जो तिब्बी मरकज़ है, आप उसका रुख कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर भी प्रशासन ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है इन डिस्पेंसरीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है, जहाँ पर आपका इलाज मुआलजा होगा, आपकी चिकित्सा होगी, आपकी चिकित्सा की जाँच होगी, आपका मुआयना किया जाएगा और जो भी मुनासिब दवाई या अद्वियात आपको चाहिए होंगी वो आपको फराहम की जाएंगी, क्योंकि जब आपकी सेहत होगी तभी तो आप इस यात्रा को मुकम्मल कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारी इंतज़ामिया सिक्योरिटी फोर्सेस और श्राइन बोर्ड की जो हिदायत हैं, उन पर आपको हमेशा अमल करना है। जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ एडवाइजरीज आप तक पहुँचाते हैं, मुख्तलिफ मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, इसी तरह प्रशासन साइन बोर्ड्स के ज़रिए या मुनादियों के ज़रिए आप तक वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं, जो भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने के लिए बोलती है, आपको उनको नज़रअंदाज नहीं करना है बल्कि उनको एक्सेप्ट करना है, उन पर अमल करना है। जैसा कि कभी कई लोग मौसम ख़राब होने की इतला मिलने के बावजूद भी जो अपना सफ़र है वो जारी रखते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हो गया और आपने जो है आप चलते रहे, आपने अपना सफ़र जारी रखा, तो खुदा न खास्ता आप किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इससे अच्छा है कि अगर आपको रुकने के लिए कहा जाता है तो आप रुकिए, अगर आपको चलने के लिए कहा जाता है तो आप चलिए। और जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो भी आपको एडवाइजरी देते हैं, जो भी आपको मशवरा देते हैं, आप उस मशवरे का ख्याल रखें, उसकी इज्जत करें और उस पर चलने की कोशिश करें। पहाड़ी रास्ते हैं, इन पर एहतियात से चलें, गैर ज़रूरी जल्दबाजी या दौड़ने की कोशिश हरगिज़ ना करें। हमने आपको पहले भी बताया कि ये रास्ते स्लिपरी हैं, आपके पास एक अच्छा जूता होना चाहिए जिसका सोल एंटी स्लिपरी हो, और इन रास्तों पर आपको दौड़ने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो स्टैमिना है, वो जल्दी खर्च होगा, क्योंकि आगे सफ़र जो है वो आपको कठिन लगेगा, आपको फिर आगे सफ़र में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहाड़ी रास्तों पर एहतियात से चलें, गैर ज़रूरी जल्दबाजी ना करें या दौड़ने से हमेशा गुरेज करें, दौड़ने की हमेशा बात सोचे ही ना, क्योंकि दौड़ने से हमने आपको बताया कि आपकी जो एनर्जी लेवल है और या आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपडेट्स जो हम तक हमारे संवाददाताओं की जानिब से पहुंचते रहते हैं। और हमने आपको चंद लम्हे पहले बताया था कि सुबह के 9 बजे तक कुल मिलाकर 3956 जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। और उसके बाद अगर हम बात करें जो वापसी के रास्ते पर यात्री हैं जो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं उसके हवाले से हम तक एक अपडेट आई है। जो लंगर पॉइंट चंद्रकोट में है वहाँ से रामबन की जानिब और उसके बाद जम्मू की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर एक बड़ी कॉन्वॉई जो यात्रियों की है वो जम्मू की जानिब रवाना हुआ है। जो यात्री पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन करके वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और अगर आप भी इस पवित्र सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं आपके लिए हम सदा स्वागत के लिए तैयार हैं। आप आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई शिकायत आपकी कोई सुझाव और आपका कोई मशवरा है हमारे लिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमसे राबता कायम कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंचने का ज़रिया भी आपको हासिल है। आप हमसे ईमेल के ज़रिए पहुंच सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए, ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com akashvanibaltal@gmail.com। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू अजला के लिए जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स प्रशासन ने जारी किए हैं उन पर भी आप राबता कायम करके अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-7199। और इसी तरह से जो जम्मू के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800-180-7198। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो यात्रा होती है, हम पहले हमने बात की खाने पीने की, कपड़ों की, उसके बाद हमने जो इंतज़ामिया है या आपकी सेहत के मुतालिक बात की और उसके बाद आपकी सेहत को आप कैसे ठीक रखेंगे उसके बात की। अब आइए बात करते हैं माहौल की। देखिए, आप अपने घरों में जायज़ा लीजिए या अपने आस पड़ोस में जायज़ा लीजिए, जब आपका घर आपके आसपास का माहौल साफ़ सुथरा हो तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है और उस मोहल्ले में या आपके घर में रहने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि साफ़ सुथरे माहौल में इंसान कंफर्टेबल फील करता है। तो इसी तरह से जो ये पवित्र यात्रा है, पवित्र गुफा तक के जो दोनों मार्ग हैं, बालतल मार्ग और पहलगाम मार्ग, इन दोनों मार्गों को साफ़ रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि सफाई से ये मार्ग, ये इलाके आने वाले मेहमानों के लिए एक खूबसूरत न्योता देंगे। उनको लगेगा कि प्रशासन अपना काम कर रही है और जो यात्री अभी तक यात्रा करके जा चुके हैं उन्होंने भी अपना फ़र्ज सही से निभाया है। इसमें आपको रास्ते पे दोनों तरफ जो है डस्टबिन्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप अपना जो गीला कचरा है वो अलग से डस्टबिन में डालिए और जो आपका सूखा कचरा है वो आप अलग से डस्टबिन में डालिए। फिर वो जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो उनका काम है, वो उसको कैसे फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, कैसे वहाँ से हटाते हैं, वो फिर उनका काम है। आपका काम सिर्फ बस इतना है कि इस मार्ग को साफ़ रखिए, कोई भी रैपर, कोई भी बॉटल या किसी तरह का भी कोई गंदा चीज़ आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि आप उसको डस्टबिन में डालेंगे क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इसकी खूबसूरती का बरकरार रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल आप बहुत कम करेंगे। प्लास्टिक की थैलियों में जो आता है सामान या प्लास्टिक के रैपर्स में जो आता है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो चिप्स हो, किसी भी तरह का कोई भी खाने पीने का सामान हो जो प्लास्टिक के बैग्स में आता है उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि प्लास्टिक आपको पता ही है कि हमारे माहौल के लिए कितना हानिकारक है, कितना मुज़िर है। और इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ करने की हम गुजार

तो इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जो हम रेडियो के माध्यम से या अपने प्रशासन के माध्यम से आप तक इतलात पहुंचाते हैं, बस उन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और ये इतलात ऑथेंटिक होती हैं। सुनी सुनाई बातों पर, कही कहलाई बातों पर आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है, और अपना जो ख्याल है वो आप रखेंगे। इस दौरान आपको किसी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इस दौरान आप अपने जो आसपास आपके चलते हैं, चाहे वो आपके जान पहचान के हों या जान पहचान के ना भी हों, उनके साथ चलते, फिर आप उनके साथ चलते चलते, उनके साथ बात करते करते इस सफ़र को आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर एक गुजारिश आपसे ये भी करना चाहेंगे कि अपने जेब में हमेशा एक डायरी रखा करें, जिस पे आप अपना नाम, अपना पता, अपना टेलीफ़ोन नंबर, और साथ में अगर आपके कोई है तो उसका नाम, पता और टेलीफ़ोन नंबर ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको ढूंढा जाए या आपकी मदद की जाए। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप इस प्रसारण का हिस्सा बने रहिए, हम और आप मिलकर भक्ति संगीत सुनते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतर 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल और डीटीएच के साथ साथ हमारा ये प्रसारण अपने स्मार्टफोन्स पर आप सुन सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, वहाँ पर आप सर्च करके हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं। और जो भी हम ताज़ा तरीन अपडेट्स अपने श्रोताओं तक, अपने यात्रियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आप सुन सकते हैं, साथ ही में आप महजूज हो सकते हैं भक्ति संगीत से भी। हम बात कर रहे थे यात्रा के दौरान हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके समक्ष में एक ज़रूरी चीज़ हम आपसे कहना भूल गए थे, वो ये कि जो भी आपके साथी हैं, आपके जान पहचान के, आप उनसे कभी अलग होने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक साथ रहने में ताकत है। एक साथ रहने में अगर खुदा न खास्ता कभी कोई मुश्किल आ जाए, कभी कोई आपके सामने परेशानी आ जाए, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वैसे भी अगर कोई बंदा अकेला आया हो, अपने साथियों के साथ ना आया हो और उसके साथ कोई और हो, तो उसे भी चाहिए, उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी मुश्किल में मदद करे, क्योंकि ये सफ़र ही हमें

एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का एहसास और इन सब चीज़ों की तालीम देता है। अपने जेब में, जैसे हमने पहले भी बताया, कि अपना एक टेलीफ़ोन नंबर रखें जिस पर आपसे, आपके घर वालों से राबता किया जा सकता है किसी भी आपातकालीन स्थिति में। और यात्रा के दौरान, जैसा कि आपको पता है कि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ही कठिन सफ़र होता है, इसमें आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि सब्र के बगैर ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। ये सफ़र हमें सब्र सिखाता है, और सब्र हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में हमें जब सफ़र आता है तो हमें उस सफ़र को कैसे तय करना है। नज़्म व ज़ब्त का हमें मुजाहिरा करना है, हमें डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना है, हमें डिसिप्लिन से चलना है, डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करनी है, और एक दूसरे का जो है वो एहतराम करना है, अपने छोटे बड़ों का एहतराम करना है, जो हमसे छोटा है उसे, उसकी रहनुमाई करनी है कहाँ से क्या है, और जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनकी मदद करनी है, क्योंकि बूढ़े बुज़ुर्गों की दुआएँ हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और ये एक रूहानी सफ़र है, इसमें रूहानियत इसके कण कण में भरी हुई है। रूहानियत से जब हम रूबरू हो जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे मन को एक सुकून मिलता है, हमें एहसास होता है कि हम एक पवित्र सफ़र पर आए हैं और इस पवित्रता का हमें फ़ायदा उठाना है, इस पवित्रता में हमें खुद को घोलना है ताकि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाए। हम आगे बात करेंगे कि जो इस साल की यात्रा है इसमें क्या कुछ नए इंतज़ाम किए गए हैं पिछले सालों की तुलना में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकते हैं, चंद भजन सुनते हैं, आपसे फिर बात होगी।

जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 इस वक्त रवा दवा है। अपने पांचवें दिन का जो सिलसिला है वो पांचवें दिन में आज पहुंच चुका है। यात्रियों के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। और इस दौरान हम अभी आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आपकी सुरक्षा की बात कर रहे थे और आपकी जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे। और हमने आपसे बोला था कि अब हम बात करेंगे जो 2026 के लिए कुछ नए इंतज़ाम किए गए हैं इस यात्रा में, वो क्या हैं। सबसे पहले जो यात्री हैं, तमाम यात्रियों के लिए जो RFID कार्ड को है वो लाजमी करा दिया गया है। इससे पहले वो कुछ यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे और उसकी बिना पर, उसकी बुनियाद पर उनको जो है यात्रा करने की इजाज़त होती थी। मगर इस साल जो यात्रियों की नकलो हरकत है उस पर नज़र रखने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको फौरी मदद पहुंचाने के लिए RFID कार्ड को जो है वो कंपलसरी करार दिया गया है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारे जो यात्री हैं ये बहुत ही हसास इलाकों से आते हैं, बहुत ही मुश्किलों और मसाइब का सामना करते हुए आते हैं। मसाइब मुश्किलात इस हवाले से कि इनके दिलों में संकोच होता है कि हालात कैसे होंगे, सब कुछ कैसे होगा, क्या हमें सुविधाएं मिलेंगी, क्या हमारा ख्याल रखा जाएगा। तो ये सब इसी वजह से होता है कि RFID कार्ड इनके लिए इजरा किए जाते हैं ताकि इनकी सुविधा में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और उसके बाद जो आता है यात्रियों की जो निगरानी होती है, इन पर नज़र गुज़र रखने का जो मामला होता है, इस साल ड्रोन कैमरास होते हैं उनकी मदद ली गई है। और CCTV जो कैमरा है, जदीद CCTV कैमरास जो पूरे रास्ते में, चाहे वो बालतल मार्ग हो या यहाँ पहलगाम मार्ग हो, दोनों मार्गों पर जो है जदीद तरीन CCTV सर्विलांस इस साल आपको देखने को मिलेगी। श्रीनगर का जो या पहलगाम का जो ट्रांज़िट कैंप है या बालतल में जो बेस कैंप है, वहाँ से लेके आपको पवित्र गुफा तक के जो रास्ते हैं, सब जगह आपको हाई क्लास CCTV कैमरास जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो पूरी इस घटनाक्रम का जो लेखा जोखा होता है उस पर निगरानी रखी जा सकती है। इस साल जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, पंचतरनी से नीलग्राट और नीलग्राट से पंचतरनी की तरफ जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती थी वो इस साल मुअत्तल कर दी गई है। वो इस वजह से कि इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। इस बारे में हम और भी मज़ीद बात करेंगे क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं इस साल की यात्रा के हवाले से, और भी बात हम करेंगे आगे। फ़िलहाल के लिए आप भक्ति संगीत से महजूज़ होइए और सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियोज से, FM 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz पर।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण जारी है और जारी है हमारा आप तक अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला। और इसी सिलसिले के तहत हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू, उन्होंने हम तक एक अपडेट पहुंचाई है जिसके मुताबिक जो यात्री है काफ़ी खुश हैं इस साल के इंतज़ाम से, काफ़ी खुश हैं जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। आइए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको सीधे सुनवाते हैं यात्रियों के तासुरात।

0: गुफा में शिव स्वरूप स्वयं मुस्कान।
1: आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हम सुबह 3 बजे निकले थे पंचतरणी से, हमने घोड़े करके हम यहाँ पे आ गए थे 5:30 बजे, और अभी दर्शन के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं।

0: पास जाओ।
1: काफी सालों से चल रहा था कि भोले बाबा के दर्शन करेंगे अमरनाथ बाबा के, लेकिन इस बार बाबा ने अपनी कृपा बरसाई है और इस बार मैं आया हूँ अपने दोस्त के साथ और बहुत ही अच्छा दर्शन हुए हैं भोले बाबा के दर्शन करके।

0: आत्मा धन्य हो गई, आंखों में से आंसू निकल गए हैं।
1: यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी और पुलिस का इतना अच्छा बंदोबस्त है कि यात्री को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है।
2: पहले और आज में फर्क ये लग रहा है कि अभी इंतजाम काफी अच्छे किए गए हुए हैं और सिक्योरिटी वाइज अगर कहे तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा सिक्योरिटी है।

0: सफाई भी बहुत अच्छी है और हम प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया करते हैं, गवर्नर साहब का शुक्रिया करते हैं।
1: जी, ये थी एक रिपोर्ट जो हम तक पहुंचाई थी हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू साहब ने। और ये सब तासुरात सुन के, ये सब रिव्यूज़ सुन के मन को शांति मिलती है। लगता है कि हमारी जो कोशिशें, हमारी जो काविशें हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी हो जो इस यात्रा को सुगम और सफल बनाने में अपना योगदान अदा कर रहा है, वो अपना काम बखूबी कर रहा है। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी अपने काम को ईमानदारी के साथ करें, और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए। हम याद बात कर रहे थे जो इस साल यात्रा के दौरान कई नए इंतज़ाम किए गए हैं उनके हवाले से, और हमने बात की जो RFID कार्ड है, CCTV फुटेज है, और जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत को सही रखने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं इस साल। श्रोताओं, रास्तों पर कई जगहों पर आपको डिस्पेंसरीज मिलेंगी, तबी मराकज़ मिलेंगी, ऑक्सीजन की सहूलियत मिलेंगी, एम्बुलेंस मिलेंगी, और काफ़ी सारा तिब्बी अमला मिलेगा जो इसीलिए तैनात किया गया है, इसीलिए काम पे लगाया गया है, ताकि किसी भी मेहमान को, किसी भी यात्री को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो उनके स्वास्थ्य को लेके। और जम्मू डिवीज़न में तकरीबन 55,000 यात्रियों की रिहाइश, उनके खाने पीने, सफाई और दीगर जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उनका ख़ास इंतज़ाम रखा गया है। जी हाँ, 55,000 यात्रियों के रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनका ध्यान रखना, ये अपने आप में एक बड़ा टारगेट होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, जिसको पूरा करना एक टीम के बगैर, कलेक्टिव एफर्ट्स के बगैर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारी रिवायत रह चुकी है कि हम मेहमान नवाज़ हैं, हमारी रिवायत रह चुकी है कि हम अपने मेहमानों को भूखा नहीं सुलाते, उनके आराम में कोई कमी नहीं रखते, भले ही हमें खुद किसी मुश्किल का, किसी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अपने मेहमान जो हैं हम उन्हें किसी किस्म का कष्ट देने की सोच भी नहीं सकते। और इस मेहमान नवाजी के लिए और हमारी इस मेहमान नवाजी को परखने के लिए और उसके बाद इस पर अपने रिव्यूज़ देने के लिए जो आपने कुछ देर पहले सुने, उसके लिए सभी यात्रीगणों का तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और आप तक आगे भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द लौटते हैं और आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुँचाते हैं।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बातल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH की OTT DTH और हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रशासन के द्वारा दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जम्मू और श्रीनगर सूबों के लिए। अगर आप श्रीनगर में किसी किस्म की कोई सहायता चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-7199 पर प्रशासन से कोई भी मदद मांग सकते हैं। इसी के साथ अगर आप जम्मू सूबे से कोई शिकायत पूछना चाहते हैं तो उसके लिए टोल फ्री टेलीफोन नंबर है 1800-180-7198। हमारे स्टूडियोज़ में

9596990954। याद रहे, इस नंबर पर आप सिर्फ SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन कॉल्स इस नंबर पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप ईमेल के ज़रिए हम तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट करें, akashvanibaltal@gmail.com। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्या इंतज़ामात हैं, ख़ास इंतज़ामात इस साल की जो यात्रा के सिलसिले के तहत हैं। और जो है मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो यात्रा के रास्तों पर मौसम की सूरत हाल के मुताबिक यात्रियों की नकल व हरकत को मुनज़्ज़म किया जाता है ताकि ख़राब मौसम में किसी भी ख़तरे से बचा जा सके। जी हाँ, इसके लिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, हम तक अपडेट्स पहुंचाता रहता है। और वहाँ पर जाके बालतल या पहलगाम के जो बेस कैंप्स हैं या जो रास्ता है, वहाँ भी रास्तों में एडवाइजरीज जारी होती हैं कि मौसम कब ठीक रहने वाला है, कब बारिशें होने वाली हैं या कब मौसम ख़राब होने वाला है। लेकिन इसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उन इतलात का, उन अपडेट्स का आपको पालन करना है। अगर आपको चलने के लिए कहा जाता है तो आप चलें, अगर आपको रुकने के लिए कहा जाता है तो बराए मेहरबानी रुक जाएं, क्योंकि ये आपकी सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए अपडेट आई होती है, आपको सही सलामत रखने के लिए ये सब कोशिश की जाती है। हमने अभी एक दो रिपोर्ट्स में भी सुना कि यात्री बहुत ज़्यादा खुश हैं जो इंतज़ाम इस साल किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में इंतज़ाम हों या ट्रांज़िट कैंप्स में इंतज़ाम हों या जो बेस कैंप्स हैं बालतल या सोनमर्ग का, जो बालतल सोनमर्ग या पहलगाम का जो ट्रांज़िट कैंप हो वहाँ की बात करें, या रास्ते में सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, साफ़ सफ़ाई का बहुत इंतज़ाम है, और ऊपर जो बाबा बर्फानी की गुफा है उसके आसपास भी जो सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम है वो अच्छा किया गया है। इंतज़ामिया ने यह भी वाजह किया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड यात्री ही अपनी मुकर्रर तारीख पर यात्रा कर सकते हैं, जबकि बग़ैर रजिस्ट्रेशन आने वालों से यात्रा मौखर करने के लिए अपील की गई है। और सुबह हमने जो है अपने जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब से एक और रिपोर्ट भी सुनी थी कि जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसको फ़िलहाल के लिए 9 तारीख तक मुलतवी किया गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि अभी जो रश बढ़ा हुआ है इसको थोड़ा कम होने दिया जाए, क्योंकि इस साल हमने अपने कॉरेस्पोंडेंट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो हमने

जी, ये हमने अमरनाथ यात्रा पे जाते जाते या वहाँ से वापस आते आते हमने ये चीज़ लाई है, तो इन्हें जो प्राइस इनका है वो भी जेन्युइन रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को कोई चीज़ महंगी देते हैं, एक तो आपको ऊपर वाला देख रहा है कि आप उसको ठग रहे हैं, दूसरा ये किसी के दिल पर, किसी की उम्मीदों पर एक ठेस पहुंच सकती है, जिससे खुदा नखास्ता आपको आगे इनके जो है गलत नताइज आपको मिल सकते हैं। और जो आने वाले यात्री हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप आते आते और यहाँ रहते रहते अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जो प्रोसीजर है, जो इंतज़ामिया ने प्रोसीजर रखा हुआ है, RFID कार्ड्स हो या आपकी रजिस्ट्रेशन हो या आपकी चेकिंग वगैरह हो, वो आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप आने का प्रयास करें, क्योंकि इस साल कई सारे इंतज़ाम किए गए हैं जिनका फ़ायदा इस साल यात्रियों को मिल रहा है, जो हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स में आज तक सुना। यात्रा का आज 5वां दिन है और हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी यात्री इस वक्त अपने सफ़र पर हैं, उन्हें ऊपर वाला सही सलामत वापस लाए, क्योंकि उनकी सलामती ही हमारी प्राथमिकता रहती है हमेशा। और हमारी प्राथमिकता ये भी है कि ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको भक्ति संगीत से महसूस कराते हैं। लीजिए, भक्ति संगीत सुनिए, जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आती हैं हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आकाशवाणी बालतल FM 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और DTH के साथ साथ आप ये विशेष प्रसारण हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। हम तक ताज़ातरीन दर्शन रिपोर्ट आया है जिसके मुताबिक अभी तक कुल मिलाकर 6,745 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 4,000

800 पुरुष, 1730 महिलाएं, 70 बच्चे, 32 साधु, एक साध्वी, दो ट्रांसजेंडर्स और 110 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, इस आंकड़े के और बढ़ने के जो हैं आसार हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि यात्रा अभी दोनों मार्गों से बहुत ही अच्छे अंदाज से जारी है, और हम यही दुआ करते हैं कि ये यात्रा इसी तरह से जारी रहे। इसी बीच हम तक जो वेदर एडवाइजरी है वो भी आई है, जिसके मुताबिक जो जम्मू से बटोत तक का रास्ता है आमतौर पे अबर आलूदा रहेगा, इसी तरह से बटोत से अनंतनाग तक का जो रास्ता है वो भी अबर आलूदा रहेगा। हालांकि किसी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी अनहोनी की कोई अभी खबर हम तक नहीं पहुंची है, और ना ही हम ये अपेक्षा करेंगे कि मौसम ख़राब हो या किसी किस्म की बाधा आए यात्रा में। इसके बाद जब हम पहलगाम से अनंतनाग से पहलगाम तक की बात करें, तो यहाँ भी मौसम अभी अबर आलूदा बताया जा रहा है। पहलगाम से पवित्र गुफा से चंदनवाड़ी का जो इलाका है ये भी बादलों से घिरा रहेगा। शेषनाग, मुरुगन टॉप, पुष्पत्री, पंचतरणी और संगम, और संगम के बाद जो पवित्र गुफा आती है, ये वाला सारा मार्ग भी बादलों से घिरा रहेगा। इसी तरह से अगर हम बालतल मार्ग की बात करें, तो श्रीनगर से अनंतनाग तक का जो रास्ता है वो भी अबर आलूदा रहेगा। श्रीनगर से बालतल का जो इलाका है अबर आलूदा रहने की अपेक्षा जताई जा रही है। दुमेल, ब्रारीमर्ग, संगम और उसके बाद पवित्र गुफा तक, ये सारा इलाका भी बादलों से घिरा रहेगा। हालांकि यहाँ भी किसी अलार्मिंग सिचुएशन की इतला हमें नहीं मिली है। हम यही अपेक्षा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि मौसम का साथ रहे और जो यात्रा है वो इसी तरीके से सुचारू रूप से जारी रहे, और ये आंकड़ा जो हमने अभी आप तक पहुंचाया, इसमें और वृद्धि हो, और हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और एन्जॉय करते रहिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण। हम तक ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट पहुंचा हुआ है, जिसके मुताबिक अभी तक 6,745 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें से 4,800 पुरुष, 1,730 महिलाएं, 70 बच्चे, 20 साधु, 1 साध्वी और 2 ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ 110 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो शामिल हैं। मौसम के हवाले से हमने आप तक अपडेट पहुंचाई कि पूरा जो घाटी है, जम्मू कश्मीर की घाटी, आज अबर आलूदा है, यानी कि बादलों से घिरी हुई है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल कहीं पर भी बारिश की चेतावनी या बारिश की जो संभावना है वो नहीं जताई गई है मौसम विभाग की जानिब से। आपकी यात्रा सुगम हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, हम इसी कामना के साथ अपना ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ाते हुए आपको भक्ति संगीत सुनवाते हैं।

0: जय शिव शंकर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो

0: के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges

0: का आना जाना रहता था, उसे फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और साथ ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है उसको भी 9 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यात्रियों का बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है। जम्मू के साथ साथ वो घाटी श्रीनगर या कश्मीर की घाटी में, जिससे इन्हीं यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और हम बात कर रहे थे कि जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसका कश्मीर और इसकी सियाहत और जो इकोनॉमी है इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा न सिर्फ एक मज़हबी सफ़र है, बल्कि कश्मीर की मईशत और सियाहत के लिए बहुत अहम रहा है और आगे भी अहम साबित होगा। हर साल लाखों यात्री वादी कश्मीर आते हैं, जिससे मुख्तलिफ शोबों को फ़ायदा पहुंचता है। जी हाँ, इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, बल्कि बहुत सारी नई जगह हमें एक्सप्लोर करने को मिलती है। यात्रा के दौरान जो होटल हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, टैक्सी वाले हैं, बस सर्विस जो है, शिकारा वाले रेस्टोरेंट और मकामी दुकानदारों की आमदनी में नुमाया इजाफा होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट का रश होता है उसकी वजह से जो है बिक्री बहुत होती है। और जो हमने चलने फिरने के साधनों की बात की, उनमें भी रश ठीक ठाक लगा रहता है। हज़ारों मकामी नौजवानों को आर्जी रोज़गार मिलता है, जिनमें पोनी वाले, पालकी बरदार, मज़दूर, ड्राइवर, दुकानदार और दीगर खिदमात फराहम करने वाले शामिल हैं। यकीनन यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो अमरनाथ जी यात्रा और जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और इसमें हमें करना क्या है कि ईमानदारी से काम करना है, चाहे वो दुकानदार हों, गाड़ी वाले हों, या जो भी छोटा बड़ा काम करने वाले हों, हमें ईमानदारी का सबूत देना है, ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि ईमानदारी से ही फिर हमें अच्छा फल आगे मिल सकता है। आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस एवं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं और साथ ही साथ हम DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी दस्तियाब है। श्रोताओं, मैं आपकी उद्घोषक शाइना ऋषि आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगी साइका सलीम और नए कुछ जो है हमारे यहाँ पे ट्रेनर, वो भी आपके साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे। तो आपका जो है प्यार रहेगा हम सब के लिए, तो हम इस ट्रांसमिशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये भी बता दें साथ साथ कि अगर आप दर्शन के लिए बालतल के मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून करेंगे FM बालतल 103.7 MHz, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के रास्ते यानी कि प्राचीन मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून करेंगे FM पहलगाम 100.1 MHz पर। और साथ ही साथ हम आपको हेल्पलाइन भी बता देते हैं 9596990954 9596990954, और ईमेल आईडी है हमारा akashvanibaltal@gmail.com akashvanibaltal@gmail.com। और टोल फ्री नंबर्स भी हमारे पास श्रीनगर के लिए 1800-1807-1999 और जम्मू के लिए 1800-1807-1998। तो इस ट्रांसमिशन का आनंद लीजिए हम सब के साथ और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे अभी से लेकर बराबर 6 बजे तक।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। हमारे संग FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH एवं न्यूज़ ऑन AIR आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर आज सुबह से बात करें 12 बजे तक 13739 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 9809, महिलाएं 3530, बालक 147, साधु 60, साध्वी 2, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षा कर्मी 189, जो कुल मिलाकर संख्या बन जाती है 13739, जिन्होंने आज सुबह से 12 बजे तक बाबा भोले के दर पर जो है अपना माथा टेका है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शनशन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें एफएम पहलगाम और एफएम बालतल के संग।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, किसी भी यात्रा की पहचान सिर्फ उसके गंतव्य से नहीं होती बल्कि उस सफर से होती है जो हमें उस गंतव्य तक ले जाता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा भी कुछ ऐसी है। यहाँ हर मोड़, हर पड़ाव और हर कदम अपने आप में एक अनुभव है। जी सायका
1: जी, बिल्कुल। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुँचने के लिए दो प्रमुख मार्ग हैं, एक तो पहलगाम मार्ग और बालतल मार्ग। दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और शारीरिक कमता, हम ये कहेंगे कि क्षमता के अनुसार जो है इनमें से किसी एक मार्ग का जो है चुनाव करते हैं।
0: बिल्कुल सायका, सबसे पहले श्रोताओं से बात करते हैं पहलगाम मार्ग की। ये परंपरागत और सबसे पुराना यात्रा मार्ग माना जाता है। इस रास्ते की कुल लंबाई जो है लगभग 48 किलोमीटर है। यात्रा आमतौर पर कई चरणों में पूरी की जाती है, जिसे शरीर को ऊंचाई के हिसाब से डालने का समय मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और पहलगाम से आगे बढ़ते ही यात्री चंदनवारी पहुंचते हैं और बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बहते हुए नदी नाले और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य यहाँ हर कदम पर जो है देखने को मिल जाता है।
0: बिल्कुल सायका, इसके बाद आता है पिस्सू टॉप। इस पड़ाव की चढ़ाई जो है कुछ कठिन जरूर है, लेकिन जो है ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य नजर आता है वो हर थकान को बुला देता है।
1: जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए यात्री शेषनाग पहुंचते हैं। नीली झील और उसके चारों ओर जो है खड़ी पहाड़ियां इस स्थान को अलौकिक रूप देती हैं। कई यात्री इस पड़ाव को यात्रा का सबसे सुंदर, हम ये कहेंगे कि सबसे सुंदर स्थानों में से एक मानते हैं।
0: शेषनाग से आगे क्या होता है बिल्कुल अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। पहले कुछ भजन।

0: ये हम जो ये ना हम बता रहे थे, ये पहलगाम मार्ग जो प्राचीन मार्ग है
1: जी
0: उसकी बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे मार्ग यानी छोटे मार्ग बालचल की।
1: जी
0: जी हाँ, बालचल का रास्ता छोटा है साइका। इसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ यहाँ कहना चाहेंगे हम, ये जो है श्रद्धालु ज्यादातर इसी रास्ते को चुनते हैं,
1: जी
0: इसी
1: जी इसी
0: मार्ग से
1: मार्ग को चुनते
0: जाना
1: हैं। जी
0: जाना पसंद करते हैं। लेकिन सायका यहाँ पे यही ये भी कहेंगे हम, लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं है ये रास्ता आसान
1: आसान है
0: है। जी
1: जी बिल्कुल। और इस मार्ग पर कई जगह चढ़ाई काफी तेज है और पथरीले हिस्से भी आते हैं, इसलिए इस रास्ते पर चलने के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना बहुत ही जरूरी है।
0: जी हाँ, जो यात्री इस मार्ग का चुनाव करते हैं, जो चुन लेते हैं इस मार्ग को, जो यात्री, उन्हें प्रशासन की सलाह और मौसम संबंधित निर्देशों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: यहाँ पर एक और खास बात जो है अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि चाहे आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करें या बालतल मार्ग से करें, दोनों ही रास्तों पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन की ओर से विभिन्न सेवाएं जो है उपलब्ध कराई गई हैं।
0: जी, हर मुख्य पड़ाव पर विश्राम
1: विश्राम शिविर,
0: मेडिकल, जी हाँ, विश्राम शिविर, मेडिकल असिस्टेंस, पीने का पानी, उसकी व्यवस्था, टॉयलेट, जो है सुरक्षा कर्मचारी और जानकारी जो भी होती है इस रास्ते में, सब कुछ उपलब्ध होता है।
1: बिल्कुल। और यात्रा के दौरान कई सेवा समितियां जो है और धार्मिक संगठन निशुल्क लंगर सेवा भी जो है चलाते हैं।
0: बिल्कुल, सुबह की गर्म चाय हो, खिचड़ी दाल और रोटी का भोजन हो, या फिर हल्का फुल्का जलपान, हजारों सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ दिन रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते
1: और
0: हैं।
1: यही सेवा भाव श्री अमरनाथ जी यात्रा को और भी विशेष बनाता है। प्रकृति का हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहेंगे कि प्रकृति का सम्मान करें,
0: जी
1: ये हिमालय जो है हमारी धरोहर है, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें।
0: जी हाँ, जो पवित्रता हम बोले बर्फ बाबा की बर्फ
1: बर्फानी
0: क्षमा
1: की जी
0: जी हाँ, क्षमा कीजिएगा कि जो पवित्रता हम बाबा बर्फानी के दरबार में देखने आते हैं, उस सफाई यानी कि पवित्रता जो हम देखने आते हैं यहाँ पे इस इतनी दूर से, उसको बनाए रखना भी हम सब की सांझी जिम्मेदारी है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत खूब।

जो शंकर बैठे कैलाश के ऊपर, कहलाते हैं जो शंकर बैठे कैलाश के ऊपर, अद्भुत खेल है रचाए।

जी श्रोताओं, आपको बता दें कि दोनों मार्गों से तीर्थ यात्री जो है बाबा बर्फानी के नाम का सिमरन करते हुए, नारे लगाते हुए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरह से सुहाने से मौसम में आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा जारी है कड़ी सुरक्षा के बीचों बीच, और आप सबके लिए यही प्रार्थना, यही कामना कि आपकी ये यात्रा जो है सुखद रहे, सफल रहे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के साथ। सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ 5 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਨੋਟਿੰਘਮ 'ਚ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिनतांग अधिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जुनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नोटिंगम में तीसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
3: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनती इश्तराक को वसत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम

0: शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब ज़मीनी मकातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निज़ाम से मरबूत हो जाएगी, जिससे तिजारत और सफ़र में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकार्ता में सदर प्रभवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज़्यादा कदीम परमबनन मंदिर के तहफ़ुज़ाती प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के नज़रियात से गहरे तौर पर मुतासिर था।
1: हम दोनों देश गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रभवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकतदारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वजीर आजम के तआवुन के एतराफ़ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग अदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकतदारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोकजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को आगाज़ किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरन कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू और कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए।

0: ट्रॉफियों का अनावरण किया और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले तीन दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा

0: इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य

0: झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज PRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने

0: वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
2: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण में। हमारे संग FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH एवं न्यूज़ ऑन AIR और आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा आप वेव्स OTT के प्लेटफॉर्म पे भी हमारे संग बने हुए हैं।
1: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के साथ आप जुड़े हुए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं हर दिन जो है प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और कुछ अपडेट्स लेकर पजमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी पजमान
1: जी, तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज 1 बजे तक 15,927 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 11,497, महिला 3,978, बालक 169, साधु 70, साध्वी 2, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षा कर्मचारी 209। इस तरह से आज दोपहर तक 15,927 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए।
0: बिल्कुल पजमान, यहाँ पे अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे, पजमान ने जो अपडेट आपके साथ साझा किया 1 बजे तक था, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रंशन के अपडेट्स आप तक पहुंचाना हमारा यही प्रयास रहता है और जहां हम इस प्रयास में रहते हैं कि आप तक अपडेट्स पहुंचाए, श्रंशन के अपडेट्स आप तक पहुंचाएं, तो वही हमारे जो पत्रकार हैं वो भी इसी प्रयास में रहते हैं कि आपको अपडेट करें। तो अभी हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से जावेद मेहराब। जी जावेद
1: जी, पवित्र अमरनाथ यात्रा जम्मू के पहले आधार शिविर भगवती नगर से रोज़ाना अपने वक्त पर पिछले एक हफ्ते से लगातार उसी जोश जज्बे और हर्ष उल्लास के साथ रवाना हो रही है। दोपहर के अपडेट्स में हमारी कोशिश है कि हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम की जानकारी दें। इस दौरान यहां पहुंचे बिना पंजीकरण के तीर्थयात्री जम्मू में विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में रखे गए हैं, जहां उनके खाने पीने और आराम का बंदोबस्त रखा गया है। हालांकि श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के द्वार की तरफ जाने की बेचैनी हर बीते दिन के साथ बढ़ रही है, लेकिन इस बीच तीर्थयात्रियों को जम्मू के विभिन्न तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों की तरफ भी ले जाया जा रहा है, ताकि उनके बीते दिन का इंतज़ार जम्मू के पवित्र तीर्थ स्थलों की तरफ भी वो जा सकें और यहां अपने पूजा पाठ कर सकें। इस बीच यात्रा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक चलाने को लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों जुगलबंदी के साथ काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही यात्रा को यहां से रवाना किया जा सके। वहीं अभी भी श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचना जारी है, लेकिन पंजीकरण 9 जुलाई तक बंद होने की वजह से तीर्थयात्री सब्र के साथ इंतज़ार में हैं। इस दौरान जम्मू संभाग में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को उधमपुर, सांबा, रियासी, डोडा में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से आज यहां जम्मू के आसमान पर बादल भी छाए रहे और तवी रिवर फ्रंट पर बनाए गए सबसे बड़े पंजीकरण शिविर में प्रशासन के लिए बारिश एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है, जिसमें बारिश और आंधी के दौरान खेमों की सुरक्षा, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और शिविर की साफ सफाई मुमकिन करानी ज़रूरी होती है। इस मिशन के लिए यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कर्मचारियों की एक बड़ी टीम को तैनात किया है, ताकि भगवती नगर शिविर, तवी रिवर फ्रंट, विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स और धर्मशालू मंदिरों में स्वच्छ अभियान को सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि सफाई सुथराई भी यकीनी बन सके। इस दौरान जम्मू के हाईवे से यहाँ पहुँच रहे तीर्थयात्री और रेलवे के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे तीर्थयात्री विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में जम्मू के रखा गया है, ताकि उन्हें 9 तारीख तक अभी इंतज़ार करना है, उसके बाद ही उनका पंजीकरण होगा और आगे उन्हें जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह से लखनपुर पार करने वाले तीर्थयात्री

0: यात्रियों के लिए भी विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में इंतजाम रखे गए हैं, उनके खाने पीने की और रहने की इंतजाम रखे गए हैं, ताकि बदलते दिन के साथ उनका इंतज़ार ख़त्म हो और फिर वो यात्रा के लिए अपना सफ़र जम्मू की तरफ कर सकें। वहीं यहाँ जम्मू में जगह जगह पर निजी स्वयंसेवी संस्थाएं, दुकानदार एसोसिएशंस और बाहरी राज्यों से आई सभाएं लंगर खाने पीने का इंतज़ाम में लगी हैं, ताकि यहाँ पहुँचे मेहमानों और श्रद्धालुओं को खाने पीने की सुविधाएं रखी जा सकें। बीते दिन के साथ तीर्थ यात्रा उसी हर्षोल्लास और जोश जज्बे के साथ यहाँ से रवाना भी हो रही है। आज भी 8,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री भगवती नगर के आधार शिविर से घाटी की ओर रवाना हुए और लगातार तीर्थयात्री दर्शन कर जम्मू वापस भी पहुंच रहे हैं और प्रसन्नता के साथ अपने घर की तरफ भी लौट रहे हैं।
1: जी श्रोताओं, ये थे जम्मू भगवती नगर से जावेद मेहराब। शुक्रिया जावेद मेहराब।
2: जी जी, और यहाँ पे हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे हम ये कहेंगे कि बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन जो है हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है स्थिति है इस वक्त बानिहाल साइड से। जी तस्कीन साहब। जी
3: बहरहाल साइट जो है, बहरहाल लंगर साइट, ये जम्मू डिवीजन का आखिरी पड़ाव है जो श्री अमरनाथ यात्रा में हजारों यात्री कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ ये और रामबन का जो सेक्टर है, ये बहुत इसका बहुत अहमियत है इस यात्रा को लेकर, क्योंकि इशारा ठीक हो तो सब कुछ बेहतर चलने की उम्मीद है। तो इसलिए यहाँ से जो आज सुबह जो जम्मू से जो बाहरी ट्रैफिक आई था, 363 गाड़ियों पर मुश्तमिल जो था, बसों, जीपों, कारों और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों में, तो वो यात्रा का ये दोनों काफिले जो बालतल और पहलगाम के रास्ते जा रहे हैं, करीबन 10:30-11 के आसपास यहाँ बानहाल से क्रॉस होकर कश्मीर में दाखिल हुए और वहां से फिर वहां की इंतजामिया के लिए कंट्रोल इनको बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ मतलब ले जाने का अमल शुरू हुआ। इस दौरान जो कश्मीर से जो दर्शन करके वापस आ रहे यात्री, वो भी हजारों की तादाद में थे दोनों काफिलों में, तो उनको भी आज सुबह और उसके बाद थोड़ा दोपहर से पहले पहले दोनों काफिले जो है रामबन और उधमपुर के सेक्टर से निकलकर जम्मू के प्लेन्स में दाखिल हुए हैं और आखिरी जो रिपोर्ट थी तो वो गालिबन जम्मू पहुंचा चाहते हैं। तो वहां से वो या तो कोई कुछ गाड़ियां जो है वो बराह रास्त वहां से ही आई है मुख्तलिफ ये जो रियासतों से मुल्क की, तो उसी तरह जो कुछ जम्मू कश्मीर की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं यात्रा के लिए जम्मू तक ट्रेनों या बसों में आते हैं, तो उसी तरह फिर वो अपना आगे का सफर वहां से शुरू करेंगे। और बिल्कुल जो आज छठा दिन था, बड़े बेहतरीन तरीके से बहुत वो वेल जो प्लानिट सिस्टम में चल रहा है यात्रा का सिस्टम, तो वो आज भी बहुत बेहतर तरीके से जारी रहा। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इसमें कल हल्की हल्की बारिशें हुई थी, आज सुबह भी बारिशें हो रही थी, बादल थे, तो बहुत मौसम जो है वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है, खुशबू आ रही है।

0: तो उनके लिए ये खबर है कि जो जम्मू से जो यात्री निकले हैं यात्रा के लिए, या जो रजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर रजिस्टर्ड शुदा है, तो या वो चाहते हैं कि कश्मीर में जाकर रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे बनिहाल में भी करवा रहे थे, जिनके RDIF वो वगैरह जो ब्रेसलेट्स वगैरह उनको जो दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर भी हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत भारी तादाद में आ रहे हैं, यानी पिछले सालों के मुकाबले हमने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन इस साल 5-6 हजार रोजाना यात्री जो 3 बजे के बाद बनिहाल और यहाँ रामबन में मतलब चंद्रकूट के इलाके में पहुंच जाते हैं, 2 बजे तो वहां से रोक दिया जाता है क्योंकि उनको टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है, तो उनको बाद में वहां पर लंगर्स में रुकाया जाता। तो उनके लिए ये खबर की जो 3 बजे के बाद बनिहाल काजीगुंड टनल के पास उनको रोक दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी गाड़ी किसी भी सूरत में ये जो टूरिस्ट वाली हो और जिसमें यात्री सवार हो उन्हें कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता जो लोकल ट्रैफिक है, जो लोकल जम्मू कश्मीर का ट्रैफिक, उन्हें 11:30 बजे तक चलने की इजाजत होगी, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखा सकते हैं, तो उसकी मदद से उनको छोड़ा जाएगा। बाकी किसी भी जो यात्री और जो टूरिस्ट है 2 बजे बाद उन्हें रावण में रोका गया है और अब 3 बजे के बाद उन्हें यहाँ बनिहाल में भी रोका जाएगा। तो फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है, बाकी ट्रैफिक भी इस वक्त गुजर रहा है। 11:30 बजे के आसपास कश्मीर से जो मुसाफिर ट्रैफिक सुबह से रुका हुआ था यात्रा की वजह से रोका जाता है, सिक्योरिटी जो खदशात है एजेंसीज को, तो उनको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा प्लान बनाया गया है। ट्रैफिक का ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी की जाए और रोजाना भी की जाती है, तो उसके मुताबिक जो 11:30 बजे से कश्मीर का ट्रैफिक जम्मू की तरफ चल रहा है और वो अभी चल रहा है, 5:30 बजे तक इस ट्रैफिक को, मुसाफिर ट्रैफिक को जम्मू की तरफ जाने की इजाजत होगी।
1: जी, अगर हम फिर ओवरऑल बात करें तो हमारी यात्रा जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है अब हम ये कह सकते हैं कि, और मौसम भी इस वक्त सुहाना है, तो इस सुहाने से मौसम में शांतिपूर्ण तरीके से और कड़ी सुरक्षा के बीच और प्रशासन की पूरी तरह से जो उसका प्रयास है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, इसी बीचों बीच हमारी यात्रा जो है जारी है, ये कह सकते हैं हम
0: बहुत जबरदस्त तरीके से जारी है। पूरी इंतजामिया खड़ी है, सिक्योरिटी फोर्स है, फौज है, बाकी SDRF है, जो भी कंसर्न इससे रखे गए हैं, और यहाँ पर जैसे हम पूरी इंतजामिया का जो सब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के बेस्तर अफसर एहलकार जो तैनात किए गए हैं, जैसे यात्रा ग्राउंड लांबर में, तो उनका बिल्कुल 24/7 ये लगा है उनका ड्यूटी। इसी तरह रामबन में है, इसी तरह हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स रखे गए हैं, तो पूरा एक निजाम है, पूरा इंतजाम है, बगैर किसी वो चूक के सब कुछ सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। तो जैसे कल हमारी एक परसों गाड़ी एक खराब हुई थी, एकदम उसके साथ एक गाड़ी रखी गई थी, उसे उसके जरिए दूसरी गाड़ी में उनको शिफ्ट किया गया और भेज दिया। आज भी एक गाड़ी यहाँ बनिहाल के नजदीक ही खराब हुई, कश्मीर की तरफ जाने वाली उत्तर प्रदेश नंबर की, तो उसको पूरी तौर पर फिर वो वहां पर मदद दी गई, जो भी मैकेनिकल निजाम उसको मैकेनिकल जो भी डिविजन के लोग जो थे तो उनको वहां पर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उसका गाड़ी को बाद में ठीक करके उसको सेट करके मतलब रवाना किया गया कुछ वक्त में ही। तो ऐसा पूरा हर चीज पर जो पूरी तरह से जो इंतजामिया का नजर है वो सब चीज जो है बेहतर तरीके से अब तक जारी है।
1: अगर वहां के मौसम की बात करें तो इस वक्त मौसम कैसा है वहां पे?
0: मौसम पिछले 4-5 दिन से जैसे यात्रा शुरू हुई है तो मतलब एक दिन छोड़कर या कुछ कहेंगे 1-2 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, कभी रावण में हो रही है, कभी बतौत में हो रही है, और कुछ इलाकों में तो बहुत डैमेज भी हुआ आज रात को, जो सुबह बारिशें हुई है चनाब वैली के किश्तवाड़ ये डोडा इस रोड पर, तो उसमें ठाठरी का एक टाउनशिप है, तो उसमें बहुत जबरदस्त पर जो पहाड़ी पर क्लाउड ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बहुत सारा मलबा पानी पत्थर जो भी कुछ था ऊपर, जिससे बहुत सारे मकान टूट गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां दब गई, हाईवे अभी बंद है, NH 244 से कहा जाता है जो किश्तवाड़ से बटोत के दरमियान से आ रहा है 110 किलोमीटर लंबी, तो वो फिलहाल बंद है और वहां पर रेस्टोरेशन का काम जारी है, तो बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हुआ है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे MP है तो उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर और बाकी हुकाम जो है अफसरान है यहाँ उनसे बात की है, वो इसमें पूरी मदद का वो यकीन दिलाया गया है और उनके लिए जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है और जो नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर वहां पर बादल फटने के बाद जो तबाही आई ठाठरी के उस कस्बे को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे मकान गए, 8-10 मकान मुकम्मल तौर से डैमेज हुए हैं।
1: तो अगर
0: बहुत सारे मकानों को मलबा वगैरह आए, तो फिलहाल जो उस इलाके में मतलब बारिशें हो रही है, लेकिन इसका

0: इम्पैक्ट अगर पिछले तीन चार से घंटे डोडा बद्रवा और किश्तवाड़ इन इलाकों में बादल भी फटे हैं, दो चार बार पिछले दिनों से डैमेज भी हुआ है, बहुत सैलाबी रैले आए हैं, लेकिन हमारा रहम है अभी जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बिल्कुल खुशगवार मौसम बना हुआ है, हल्की बारिशें होती तो उसको उससे मौसम का एक मिजाज ही अलग बदल जाता है क्योंकि बहुत गर्मी है निचले इलाकों में, तो इस इलाके में जब ये बारिशें होती तो उससे बहुत फिजा जो है वो बहुत खुशगवार हो जाती है।
1: तो हम ये कहेंगे कि अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ है हमारी यात्रा पे कोई बाधा तो नहीं आई है?
0: नहीं, इससे कोई असर इस पर नहीं पड़ा, बाकी जो क्योंकि वो NH-244 है और जो इस पर यात्रा चल रही है NH-44 है, तो ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ही बटोत के पास उसका अलग लिंक निकलता है डोडा और किश्तवाड़ के लिए, तो उसी हाईवे पर ये 244 हाईवे पर जो बाद में आकर सिंथन टॉप से कश्मीर के साथ भी मिलती है, तो उस शाहरा पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, कल भी हुआ था, परसों बंद हुआ था टोटल कल, तो आज सुबह फिर हो गया और आज दोबारा ये हाईवे बंद हो गई और इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर लगे हुए काम पर। फिलहाल जो मौसम हल्का हल्का आलूद भी है, कुछ हालात है, कुछ तो गहरा बादल है कुछ साइड में, तो कुछ साइड में थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है, तो इस तरह जो मौसम आते हैं उनमें आइंदा चांद होते हैं, हल्की हल्की बारिशें कई मुकाम पर जम्मू कश्मीर के उसका इम्कान जाहिर किया है, तो अब देखते हैं आगे कैसा रहता है मौसम, तो फिलहाल खुशगवार मौसम है और अच्छा मौसम है।
1: मौसम अच्छा है और हमारी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई है, कोई रुकावट नहीं आई है, हमारे लिए यही बड़ी बात है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से, जिन्होंने हम आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए इनसे जुड़ते हैं हमारे संवाददाताओं से, ताकि आपकी यात्रा जो है सुखद तरीके से चलती रहे और सफल हो जाए।

0: श्रोताओं बने हुए आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रम में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि क्षण क्षण की जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे। और इस वक्त हमारे आधार शिविर पहलगाम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक जुड़ चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहाँ पर। जी तारिक साहब,
1: की आध्यात्मिक यात्रा आस्था और सफलता के साथ जारी है। सुहाने मौसम के बीच आज सुबह 4 बजे नदार शेवत से हजारों भक्तों पर मुश्तमिल जत्थे ने चंदनवारी का पड़ाव पार करके अपने अगले पैदल यात्रा जारी रखी है। दुश्वार गुजार हिमालयी पर्वतों के मार्ग से गुजरते हुए तीर्थ यात्री शिशनाग और पंचतरनी की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार शिशनाग और पंचतरनी में रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालु गुफा में वर्जमान पवित्र शिवलिंगम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। काजीगुंड ट्रांजिट कैब से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 182 गाड़ियों में सवार 4,824 यात्री अपनी पहली मंजिल नुनवन बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं, जिनमें 3,461 पुरुष, 144 महिला, 250 साधु, 88 साधवी और 7 बालक शामिल है। अगर अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई से ये रिपोर्ट

0: पायलट किए जाने तक 99,884 से अधिक श्रद्धालु पवित्र दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, जबकि दर्शन का क्रम शाम गए तक जारी रहेगा। प्रशासन के द्वारा नूनों बेस कैंप में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हर कैंप और यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सहूलत के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। चिकित्सा सुविधा के लिए हर पड़ाव पर चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं। कैंपों में यात्रियों की आवश्यकता के वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें मौसमी वस्त्र और दीगर आवश्यक सामग्री शामिल है। सरकारी और गैर सरकारी लंगरों में शुद्ध भोजन और अब पीने के लिए जल की अंतिम व्यवस्था की गई है, जिसकी निगरानी प्रशासन के द्वारा नेतृत्व की जा रही है। आराम और क्याम के लिए वाटर प्रूफ खेमों और टेंटों का भी उचित प्रबंध किया गया है। तो मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार यात्रा मार्ग पर मौसम फिलहाल अनुकूल है। आम बीच बीच में मौसम में परिवर्तन की संभावना भी बनी रहती है। मौसम विभाग ने श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अपना विशेष मौसमी सिस्टम स्थापित किया है, जो मौसम की पल-पल की जानकारी प्रसारित करता है। वर्तमान में पहलगाम से पवित्र गोपाल तक तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से जम्मू से पवित्र गोपाल तक यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आधुनिक उपकरणों से लैस सुरक्षा बल के जवान दिन रात गश्त कर रहे हैं, ताकि यात्रा परमन श्रेष्ठ और सफलतापूर्ण संपन्न हो सके। सभी सरकारी विभागों के अधिकारी आपस में भी समन्वय के साथ यात्रा की नेतृत्व निगरानी और देखरेख कर रहे हैं। जी
1: तारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विवरण के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोता, आपको बता दें कि ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक पहलगाम के आधार शिविर से, जिन्होंने बताया कि पवित्र गुफा के पास इस वक्त बहुत ही सुहाना सा मौसम 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बना हुआ है, जिस वजह से जो है यात्रा और आनंदमय जो है हो गई है, और हमारी भी यही कामना कि ये यात्रा जो है बहुत ही सुखद तरीके से चलती रहे।
2: जी सायका, साथ ही साथ अपने श्रोताओं के साथ ये अपडेट शेयर करना चाहेंगे 2 बजे का। तो 2 बजे तक जो हमारे पास दर्शन अपडेट आया है, तो इसके हिसाब से जो है 2 बजे तक 17,844 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या रही है 12,992, महिलाएं 4,360, बालक 184, साधु 79, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 2, और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि सुरक्षा कर्मचारी जो है 224। तो इस तरह संख्या बनती है। आज दोपहर तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन यात्रियों ने जो पाए हैं 17,844। तो पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहते हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी श्रोताओ, हम आपके साथ अपडेट्स साझा करते रहते हैं, यहाँ पे आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और हमारे पास जो अपडेट आते हैं वो हमारे रिपोर्ट्स लाते हैं और रिपोर्टर्स के अपडेट हम आप तक पहुँचाते हैं। और हमारे जो हैं श्रीनगर पांठा चौक बेस कैंप के जो रिपोर्टर हैं हमारे इमरान आयको जी, तो वो जुड़े हैं फोन लाइन पर। जी इमरान
1: जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा जारी है और आज भी हम देख रहे हैं कि यात्रियों की यहाँ श्रीनगर में आमद जारी है, और यानी कि जो अराइवल उनका है, और यहाँ से फिर उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, यहाँ से उन्हें जो है कॉन्वाई के जरिए से, और उसका भी जो सिलसिला है वो जारी है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि आज भी अमरनाथ जी यात्रियों के जो जत्थे हैं वो दोनों रास्तों की तरफ रवाना किए गए, बालतल भी और पहलगाम भी, और दोनों रास्तों के लिए जो अमरनाथ जी यात्रीज है जिनमें मर्द, खवातीन, साधु, साध्वी, कुछ बच्चे भी मौजूद थे और कुछ एक दो ट्रांसजेंडर्स भी शामिल थे। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो है वो पहले दिन से ही जो यात्रा के लिए यहाँ पे आए हैं, तो श्रीनगर पहुंच के ही इन्हें जो श्रीनगर के ट्रांसिट कैंप में पहुंचते हैं शाम को या दिन में, तो रात को स्टे करने के बाद सुबह उन्हें रवाना किया जाता है। और एज यूजुअल आज भी उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के यहाँ से रवाना किया गया है, और इस सिलसिले में हम देख रहे थे कि यात्री बड़े खुश है, उत्सव उनमें है कि वो उन्हें अमरनाथ जी गुफा जाने का मौका मिल रहा है और वहां पे वो दर्शन कर रहे हैं। और खासकर जो यात्री

0: जल्दी जल्दी से कुछ बातें उनसे सुनने में मिली। जब मैंने उनसे पूछा कि कब आए हैं और कहाँ से आए हैं, एक मध्य प्रदेश से था, दूसरा दिल्ली से आए थे, और एक दो जो है वो दीगर केरला और दीगर स्टेट से आए थे, और सबने एक जुबान होके बात की कि ये हमारे लिए जिंदगी का सबसे खुशी का पल है कि वो अपने जो उनके पास वो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स थे वो उन्होंने दिखाए कि ये हमारे लिए खुशी का पल है कि हमारे पास ये है। वो कार्ड दिखाने का मतलब उनका ये था कि हमें परमिशन मिली है, हम इसके लिए एबल है कि हम वहां तक जाएं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें रजिस्ट्रेशन मिली है जाने के लिए। तो वो खुशी उनमें देखी गई कि यात्रा को कितना ये मुकद्दस यात्रा जो है इसके लिए कितने जो श्रद्धालु है, जो डिवोटीज है, इंतजार करते हैं, और कितनी सआदत है उन लोगों के लिए जो यहाँ गुफा का दर्शन करते हैं। सो ओवरऑल जहां तक यात्रियों की यहाँ पर अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ हर ट्रांजिट कैंप की तरह यहाँ पे भी मखसूस और खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो लंगर हो और चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो यहाँ पर रहने के लिए जो फैसिलिटीज हो, या फिर देखा कि अभी गर्मी का मौसम है तो किस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज रखी गई है, फैंस वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं, और इसके अलावा काउंटर सेटअप यहाँ पे किए गए हैं, लगाए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं, सो दैट अगर किसी भी यात्री की कोई दिक्कत हो, उन्हें कोई परेशानी हो, या इन केस किसी यात्री को किसी असिस्टेंस की जरूरत हो, यानी उन्हें कोई मदद चाहिए थी गवर्नमेंट से, तो वहाँ काउंटर पे जाके वो असिस्टेंस, वो मदद हासिल कर
1: कर
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं।
0: और इसके लिए गवर्नमेंट ने हर महकमे के एहलकार यहाँ तैनात है, पुलिस तैनात है, ट्रैफिक पुलिस खिदमत अंजाम दे रही है, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोग, और खासकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो एहलकार है, जो एम्प्लॉयज है, वो डे नाइट अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज रखी गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज रखी गई है, और कोई यात्री अगर खुदा ना खासा बीमार भी हो जाए तो वैसे भी यहाँ एम्बुलेंसेस का एहतमाम किया गया है, या डॉक्टर्स तैनात है, कोई भी फर्स्ट एड की जरूरत हो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे रखी गई है, और सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे रखे गए। और ये सिर्फ यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पे नहीं, बल्कि पूरी यात्रा के रूट्स पे जब आप देखेंगे जहाँ जहाँ ट्रांजिट कैंप लगाए गए हैं या बना रखे गए हैं, तो वहाँ इस तरीके की ये खास जो फैसिलिटीज है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। और बस मकसद ये है कि यात्रा हर साल की तरह इस साल भी पुरअमन और पुरासन तरीके से, एक पीसफुल तरीके से इख्तिताम पजीर हो, और यात्री यात्रियों को बिल्कुल शिकायत करने का मौका ही ना मिले, वो
1: बिल्कुल
0: एडमिनिस्ट्रेशन या इंतजामिया की यहाँ पे कोशिश है।
1: बिल्कुल, आपने ये रजिस्ट्रेशन की बात की तो इमरान हमें बताइए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है वो तो अच्छे से जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं की है, उनको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है या ऑनलाइन वहीं पे रजिस्ट्रेशन होती है, जब तक रजिस्ट्रेशन होती है वो वहीं पे उनको वही उसी जगह ठहराया जाता है?
0: देखिए, जैसे मैंने कल भी अपनी रिपोर्ट पे कहा था कि बहुत सारे अमरनाथ जी यात्रियों से हमारी यहाँ बात हो रही है, तो हम तो जाहिर सी बात है उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ आके किस तरह की फैसिलिटीज है, आपको तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो यहाँ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पे किस तरह से उनका बिहेवियर आपके साथ है, लोकल्स का है, तो एज सच इन 4-5 दिनों में हमें कोई ऐसी ग्रीवेंस यात्रियों की तरफ से तो नहीं
1: नहीं
0: आई,
1: मिली
0: चाहे
1: है।
0: वो खाने पीने की हो या बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज होती है। अगर एक चीज है जो आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन में
1: रजिस्ट्रेशन
0: हमने देखा
1: जी
0: कि कतारों में लोग है, भीड़ काफी है, तो उसको लेके यात्री थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि नहीं जी हमें इतना वेट करना पड़ा, हम कल आए हैं, आज रजिस्ट्रेशन मिली है। लेकिन उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, गवर्नमेंट की तरफ से डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से यात्रियों से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, जो गवर्नमेंट आपको हिदायत दे रही है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज आपको दी जाती है, तो एटलीस्ट यात्री जो है उन एडवाइजरीज को
1: फॉलो
0: देखें, उन
1: करना।
0: गाइडलाइंस को पढ़ें, और अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस वो जो है रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि जो यात्री गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को नहीं जानता है, जो वो मालूम नहीं कर पाता है या उससे बेखबर है, तो शायद उन्हीं में वो शायद इस चीज को लेके कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, अदरवाइज शायद ये शिकायत भी नहीं मिलती। तो ये इस ट्रांसमिशन के जरिए भी जो भी यात्री हमारी बात इस वक्त सुन रहे हैं, तो हम भी उन तक ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, या हमारी जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से यात्रियों के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है, जो डूज एंड डोंट्स बताए गए, जो एडवाइजरी जारी की है, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी भी आई है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ें, उसको मालूम करें, और उसी गाइडलाइन एडवाइजरी के मुताबिक जो है रजिस्ट्रेशन भी करें।

0: कश्मीर आने का जो है प्रोग्राम भी करें, सफर भी बनाएं, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज किसी भी असिस्टेंस के लिए, अदरवाइज आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए गवर्नमेंट के यहाँ पे महकमे हैं, गवर्नमेंट की यहाँ पे ग्रीवेंस सेल है, गवर्नमेंट ने काउंटर एस्टेब्लिश किए हैं, गवर्नमेंट के फोन नंबर दिए गए हैं। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर तो वहां पे सारी जो है आप अपनी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के मामले पे ही कोई ग्रीवेंस है, तो अदरवाइज सारे यात्री जो है अरेंजमेंट्स को लेके काफी खुश नजर आ रहे हैं।
1: लेकिन बेहतर तो यही है कि रजिस्ट्रेशन करके ही वो लोग आगे बढ़े, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन ना होगी तो वो यहाँ पे आएंगे यात्रा करने के लिए तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनको पहले से ही सोचना है, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके लिए ये क्या क्या प्रोटोकॉल्स है इसके, तो उनको फॉलो जरूरी करने हैं, अदरवाइज उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम यात्रा के लिए जाएंगे तो जो भी उसके अराउंड जो भी हमें उसके लिए रूल्स देखने हैं वो हमें ही फॉलो करने हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप से इमरान नाई को।

श्रोताओ बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग FM बालथल 103.7 और FM पहलगाम 100.1 DTH एवं आराधना चैनल न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से, और इसके अलावा आप वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जो है आपके साथ एक जानकारी जो है साझा करना चाहेंगे, वो ये है कि अभी तक सुबह से 3 बजे तक कुल मिलाकर 20,537 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 14,892, महिलाएँ 5,116, बालक 204, साधु 89, साध्वी 5, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षाकर्मी 229 शामिल हैं। और यूँ 3 बजे तक हमारी संख्या बन जाती है 20,537। और आपको साथ ही ये भी जो है बताना चाहेंगे कि आप जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जाएं, यानी कि आप निर्देशों का पूरा पालन करें जो प्रशासन ने दिए हुए हैं, ताकि आपकी यात्रा जो है बिना किसी बाधा के चलती रहे और सुखद तरीके से सफलतापूर्वक जो है हो जाए।

0: जी श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं जो कि आप तक जो है ताज़ा जानकारी पहुंचाते हैं, और ताकि ये कोशिश हमारी इसीलिए है, ये प्रयास इसलिए है कि आपकी यात्रा जो है सुखद तरीके से जो है पूर्ण हो जाए। और इसी सिलसिले में अभी जो है हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम रिजवान गांदरबल के आधार शिविर से जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसी स्थिति है इस वक्त गांदरबल मार्ग से। जी रिजवान साहब
1: जी, बागतल के पूरे क्षेत्र में वातावरण खुशगवार है। मौसम बीच बीच में आलूद रहता है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ वर्षा भी होती है। सुहाने मौसम के बीच आज 10 बजे तक 14,200 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दुमेर कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालु में 10,445 पुरुष, 3,342 महिलाएं, 115 बालक बालिका, 42 साधु, 19 साधिया, 7 ट्रांसजेंडर एवं 230 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। ऊंचे पर्वतों के बीच श्रद्धालु ने पंचतरी, काली माता, संगम टॉप, लोअर केव तथा अपर केव जैसे कठिन मकाम तय करके पवित्र गुफा पहुंचे, जहां उन्होंने गुफा पर माथा टेका, पूजा पाठ में शिरकत करके देश एवं घाटी के विकास और शांति के लिए प्रार्थना की। शिवलिंगम का दर्शन करके पवित्र गुफा से बालतल बेस कैंप वापस पहुंचने का सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा। इस बीच सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आज 2 बजे तक 1,280 श्रद्धालु ने बाबा बर्फानी की गुफा पर माथा टेका एवं शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं में 1,110 पुरुष, 130 महिलाएं, 15 बालक बालिका, 6 साधु, 3 साधिया एवं 16 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। यात्रियों को यात्रा रूट के हर पड़ाव पर जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बाबा बर्फानी के भक्तों ने आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन ने इस बार जगह जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जबकि यात्रियों की हिफाजत के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बीच डिजास्टर या किसी भी ऐसी सूरत हाल से

श्रोताओ बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में FM बालतल और FM पहलगाम के संग। और आपको बता दें कि दोनों मार्गों से तीर्थ यात्री जो है बाबा बर्फानी के नाम का जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, नारे लगाते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण हम कहेंगे कि तरीके से ये यात्रा जो है आगे बढ़ रही है और हमारे तीर्थ यात्री जो है आगे बढ़ रहे हैं। और मौसम सुहाना है और इस सुहाने से मौसम में यात्रा जारी है कड़ी सुरक्षा के बीच और बहुत ही उच्च स्तर की व्यवस्थाओं के बीचों बीच जो है यात्रा चल रही है। और हम सब की यही के लिए हम यही कहेंगे कि हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आपकी यात्रा जो है सुखद रहे, सफल रहे। और साथ ही आपसे ये निवेदन भी करते हैं कि आप जो है पंजीकरण के बाद पहले आप पंजीकरण कराएँ और फिर उसके बाद अपनी बारी की जो है प्रतीक्षा करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: कसकरम दौरान के चलते शुरू कराई
1: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच एवं न्यूज़ ऑन एआईआर आराधना चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा आप हमारे साथ बने हुए हैं वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं आपको बता दें कि इस वक्त अभी जो है फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी साथी उद्घोषक सायका रफीक और उनके साथ हैं इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री सुरेश चंद मीना और आसिफा मैम। आइए जानते हैं कि क्या कुछ साझा करना चाहते हैं इस विशेष प्रसारण में। जी सायका जी।
0: जी सायका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समाप्त कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सिलसिले में एफएम बालतल और एफएम पहलगाम की खसूसी बराह रास्त नशिया 3 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली इस बरस की पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा आज अपने पांचवें दिन में दाखिल हो चुकी है। देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस पवित्र यात्रा में शरीक हुए हैं और हो भी रहे हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं लाल चौक के घंटाघर के पास और यहाँ जमा चंद यात्रियों से गुफ्तगू करेंगे और उनके सफर तजुर्बात और इस रूहानी यात्रा से वाबस्ता एहसास जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ एक छोटी सी यात्री आई है, इनसे जानते हैं इनके एहसास के बारे में। आपका नाम क्या है?
2: अर्चना चौहान।
0: अर्चना जी आप कहाँ से हैं?
2: प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
0: आपका चेहरा बता रहे हैं आप बहुत ही एक्साइटेड है
2: जी।
0: तो आप होके आई है यात्रा
2: से? हमको जाना है।
0: अच्छा जी, तो जज्बात आपके एक्सपीरियंस आपका वो अंदर से जो आप अभी जोश महसूस कर रही है?
2: हम बहुत एक्साइटेड है वहाँ देखने के लिए, यात्रा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
0: और ये जो है कि अभी आप छोटी उम्र में है, अभी आप पढ़ाई के साथ बिजी होंगी, फिर भी आपने वक्त निकाला, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया?
2: उन्होंने
0: तो अभी तक आपने कभी यात्रा दर्शन किए हैं?
2: पहली बार।
0: और आपके साथ कौन कौन है?
2: मेरे भाई है, मेरे भैया नहीं है अभी आ रहे हैं, वो
0: अभी तक कोई मुश्किल पेश आई, दुश्वारी पेश आई? तो अभी यहाँ पे कश्मीर में आ पाई, अभी यात्रा का सफर तो आधा ही, अभी अब आगे का मरहला पड़ेगा, तो अभी तक कोई मुश्किल पेश आई? कश्मीरियों ने आपका साथ दिया जिनके साथ आपका अभी हुआ है, तो अभी जब आप जाएंगी तो वहाँ पे अभी काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाना है, ठंड भी हो गई, मौसम का बदलाव भी है। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत तो
2: नहीं? कुछ नहीं।
0: आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि अभी आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन जो सफर आपने किया उसके दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आई जो आप अपने आने वाले श्रद्धालुओं को बताना चाहिए?

0: अभी इससे पहले भी कभी आप आए हैं?
1: नहीं, ये पहली मर्तबा है हम यहाँ पे दर्शन करने के वास्ते आए।
0: तो अभी आपके चेहरे से हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा, क्या आप तो कैसे एक्साइटेड करें? कभी होता है
1: यात्रा करने से पहले बहुत एक्साइटमेंट था कि हम आपको ऐसा बोले कि यहाँ पे वेदर का कुछ कंडीशन ऐसा रहता कि हालत कभी कभी बदल जाता है, ऐसा करके पहाड़ बहुत चढ़ना है ऐसा है, मगर कोई किसी दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसानी से हमारा दर्शन हो गया। यहाँ पे कश्मीरी की जो भी पीपल है बहुत हमारा साथी दिए है, घोड़े वाले और ट्रैवल वाले बहुत सारे हमारे दोस्त बन गए और हमारा अच्छा साथी दिए, हमारा पूरा अच्छा दर्शन हो गया। मान लक्ष्य का
0: इसका मतलब आपको कोई दिक्कत पेश नहीं है?
1: कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इंजन है यहाँ पे।
0: जी जी, अमरनाथ और बागेश्वर के रास्ते में जो कैंप वगैरह मेडिकल कैंप लगते हैं या आपका लंगर लगता है खाने पीने का और जो सरकार के इंतजाम थे वो सब सही थे?
1: सब सही है, और लंगर में भी हमारा बहुत अच्छा मिला, मतलब अच्छा खाना मिला सब है हमारे को। जो भी दो दिन हमारा सफर था अमरनाथ जी कने, अच्छा सफर था और अच्छा खाना भी मिला है वहाँ पे।
0: और कुछ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बताना चाहेंगे?
1: कुछ भी टेंशन नहीं है, अभी आने के वास्ते आप बिल्कुल हैप्पी आ सकते हैं और दर्शन करने के कर लेके जा सकते हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम राम कृष्ण है। राम जी, राम कृष्ण
0: मैम। कहाँ से आप?
2: मैं हैदराबाद तेलंगाना से आया हूँ।
0: जी, आपके दर्शन हो गया, आपने बाबा बर्फानी के दर्शन
2: करके। दर्शन तो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ।
0: तो कैसे रहा आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: एक्सपीरियंस तो बहुत एग्जैक्ट, और सफर जितना मुश्किल से गया वहाँ दर्शन के बाद बहुत हैप्पी था।
0: दर्शन के बाद वो थकावट निकल,
2: थकावट पूरा हैप्पी से रिलीफ हो।
0: और जो बाकी इंतजाम सरकार की जानिब से हुए थे और मेडिकल कैंप
2: बहुत बहुत बोल नहीं सकते, उतना उन लोगों का
0: साथ रहा,
2: और आर्मी पुलिस सब लोग बहुत अच्छा कर रहे, हर एक का कोई मुश्किल क्या बोलते वो
0: साथ थे आपके। और देखिए, आपने दर्शन कर लिया, आपको आप तजुर्बा है इस सफर का, तो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई मशवरा ऐसा जो उनके लिए मैसेज आए और वो उस पे अमल करें?
2: आने वाले सब लोग खुशी से आ सकते क्योंकि अभी वो टाइम है, आराम से क्या है बोलते पहले रिशन कर लिया तो और अच्छा रहता, यहाँ आके फिर मुश्किल एक दो दिन मुश्किल करना पड़ता, अगर पहले एक दिन कर लेके आए तो और अच्छे से दर्शन होता उन लोगों को, तो एक अच्छा है सब लोगों का, बहुत रिलीफ होता क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा उन लोगों को मुश्किल करना पड़ता क्योंकि वो करना डॉक्टर करना सर्टिफिकेट देना, वो पहले कर लेके आए तो आराम से अच्छा
0: मेडिकल और रजिस्ट्रेशन वो
2: कर लेके आए तो और अच्छा रहता,
0: वक्त
2: बचेगा और नहीं तक क्या बोलते रिलैक्स होता अच्छा।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शाहिना
3: जी, आपसे फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की।
0: जी।

श्रोता, आप सुन रहे थे लाल चौक में हमारी साथी उद्घोषक साइका रफीक की बात हुई कुछ तीर्थ यात्रियों से जो हमने आपके साथ फोन के माध्यम से जो है साझा किया।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और इस वक्त फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन के माध्यम से हमारी साथी उद्घोषक सायका रफीक। जी सायका जी।
1: जी शाहिना, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ एक यात्री जुड़ चुके हैं, इनसे इनका नाम पहले पूछते हैं। जी सर, आपका नाम?
2: मेरा नाम श्रीधर है।
1: और आप कहाँ से?
2: हैदराबाद से हूँ, तेलंगाना से।
1: आपकी एक्साइटमेंट लग रहा है, आप दर्शन करके आए हैं?
2: हाँ, मैं तो दर्शन करके, पहले दर्शन से पहले बहुत नर्वस था, मेरा फर्स्ट टाइम था ये।

0: नमस्ते पहले जी, लेकिन मैं यात्रा करना बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ
1: जी जी। और दर्शन कैसे रहे आपके?
0: बहुत बढ़िया था, अच्छा था, इजी था, मैं समझा कुछ हार्ड रहेगा, लेकिन परवाने अच्छा हुआ, थोड़ा भीड़ था लेकिन अच्छे तरीके से हो गया, और वहाँ पे व्यवस्था भी बढ़िया था, जो एयरपोर्ट इंतजाम जो बढ़िया गवर्नमेंट ने करा था, अपने जो है ना बढ़िया करे थे इंतजाम,
1: और जो मेडिकल कैंप्स
0: बढ़िया है,
1: और जो हमारे यहाँ मेहमान नवाजी कश्मीरियों की मानी जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: काफी सपोर्टिव था, कुछ रहने लगा हमारे को सपोर्टिव था, गोड़ा वाले हुए सब सपोर्टिव थे, रिजनेबल अच्छा ही है।
1: और बाकी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई आपको?
0: नहीं।
1: और मौसम कैसा रहा?
0: मौसम बढ़िया था, मैं बहुत बढ़िया था, इसमें बारिश आया था एक घंटे दो घंटे के लिए, लेकिन थोड़ा तकलीफ रेनकोट वगैरह ले गया, बराबर से हो गया।
1: और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने तजुर्बे से जो आपने यात्रा के दौरान तजुर्बा किया हो?
0: हाँ, उनके लिए मैं पहले बोलता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल पहले कराइए, करने के बाद ही आइए, मुझका ही दिक्कत है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करके आए ना, उन लोगों के लिए बहुत भीड़ का हो, थोड़े लोग देख पाए वापस भी चले गए, गवर्नमेंट तो मुझे कुछ देखे जो रजिस्ट्रेशन कराए उनको जल्दी जल्द दर्शन करा के भेजना है, व्यवस्था बढ़िया था, लेकिन
1: आपका मतलब है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्यादा बेहतर है, कम लगेगा, दिक्कत नहीं
0: होता, सीधी तरीके से हो जाएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करके आइए और थोड़े मेडिसिन वगैरह लेके आइए, रेनकोट और स्वेटर वगैरह लाइए, बढ़िया रहेगा बस।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू
1: जी। सर आपका नाम?
2: जी नमस्कार जी, मेरा नाम साई कुमार है, हम हैदराबाद से आए।
1: जी जी, तो पहली बार दर्शन के लिए आए हैं?
2: हाँ जी, हाँ जी, पहली बार
1: दर्शन के लिए कि आप जा रहे हैं?
2: नहीं नहीं, दर्शन हो गया है हमारा।
1: तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
2: बहुत अच्छा लगा,
1: आप सुकून महसूस कर रहे हैं?
2: हाँ जी,
1: आपको कैसा फील
2: हो रहा? बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दर्शन हो गया, बहुत जल्दी हो गया हमारा।
1: किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इतने मुश्किल सफर को, और मौसमियात मौसम के हिसाब से भी देखे तो मुश्किल है, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस सफर के लिए, इस पवित्र दर्शन के लिए?
2: एक्चुअली हमारा फ्रेंड्स जो है वो लोग बहुत साल से जा रहे है, तो उनको देख के ठीक है मैं भी आता हूँ बोल के उनके साथ में आया हूँ मैं, मगर पहली बार आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे,
1: पहला एक्सपीरियंस
2: है, बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: और अगर हम सरकारी इंतजाम की बात करें, जो सरकार ने खाने पीने के लंगर जो लगवाए हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, या चलने फिरने में दिक्कत ना हो यात्रियों को, वो कैसा रहा?
2: किधर भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ हमारे को, बहुत मिलिट्री है और मेडिकल है वहाँ पे, और बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और बहुत फ्रेंडली बात किया है उन लोग, जो भी है वहाँ के लोकल कश्मीरी लोग जो अभी है, अब घोड़ा वाला रहने दीजिए या कार ड्राइवर्स रहने दीजिए, बहुत बहुत फ्रेंडली बात करा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को उन लोग से।
1: घोड़े वाले या कार ड्राइवर्स के बगैर जो बाकी आम कश्मीरी आपको आगे पीछे दिखे, उन्होंने आपकी हेल्प की, कहीं आपको लगा कि जरूरत है तो वो पेश रहे आपकी हेल्प के लिए?
2: बहुत बहुत बहुत हेल्प करे है वो लोग, आगे आगे रस्ते के लिए पता नहीं का है तो, या इधर जाना उधर जाना, हम लोग कंफ्यूज्ड है, पहली बार आया किधर जाना किधर नहीं जाना मालूम नहीं है हमारे को, वैसा हम लोग बहुत अच्छा गाइड किए हैं उन लोग।
1: और पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचाई है, ऊपड़ खापड़ रास्ते हैं, वो रास्ते पे चलते वक्त दुश्वारी तो नहीं हुई? मतलब सेहत के हिसाब से तो अलग बात है, लेकिन फीलिंग्स वगैरह सीढ़ियां, वो सही रास्ता बना?
2: बहुत अच्छा रास्ता बनाया है, इधर भी कुछ भी नहीं है, जो पिछले जो दो चार साल पहले जो कैसा था थोड़ा तकलीफ था, बट अभी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा कर दिया।
1: देखिए आने वाले कई श्रद्धालु हैं जिनको सेहत के हिसाब से कोई दुश्वारी हो, या कोई मशवरा, ऐसा कोई ऐसा मैसेज जो उनके काम आए, सफर आसान उनके लिए बनाए?
2: देखो एक ही है, अगर बिफोर कमिंग दे शुड एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और इधर आने के बाद में क्या क्या है, 12-12 घंटा इधर वेट करना पड़ रहा है मेडिकल के लिए, और वो लाइन में करना है नाइट में लेके मॉर्निंग तक, उनका ये नहीं हो रहा है
1: जी,
2: तो आप पहले करके आए तो बहुत अच्छा रहता है।
1: ये सबका हाल है कि सिर्फ उनका जिन्होंने मैनुअली अपना
2: जो नहीं किया है उनका है, जो ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन ऑलरेडी करके आया है, हम इजीली चले गया है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, किधर भी हम लोग को कोई रोका ही नहीं है, हम लोग इमीडिएट चले गए, 5-10 मिनट में हम लोग चले गए अंदर में।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू वेरी मच
1: जी। आपका नाम?
3: मेरा नाम बबीता।
1: बबीता जी कहाँ से आई हैं आप?
3: संभाजी नगर से।
1: दर्शन करके आए हैं कि पहली बार जा रहे?
3: दर्शन करके आए।
1: करके आए हैं, खुश हैं आप?
3: खुश।
1: कितना ज्यादा खुश हैं?
3: बहुत खुश है।
1: तो थोड़ा चेहरे से भी हमें दिखाइए, आप बहुत खुश नहीं लगते?

0: थकी हैं आप?
1: नहीं।
0: तो कैसा रहा आपका सफर?
1: बहुत अच्छा रहा।
0: और आगे दिक्कत तो नहीं हुई सफर करते?
1: कोई दिक्कत नहीं हुई।
0: बाबा बर्फानी के दर्शन करके कैसा लगा?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
0: दोबारा आएंगी?
1: आएंगी ना।
0: और किसको लाएंगे आप साथ में?
1: अब ये दामाद लाई, बेटी लाई। ये और एक बेटी लाई, वो और एक दामाद आई।
0: तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सर्दी तो नहीं लगी या
1: कुछ नहीं हुआ?
0: और पूरा पहाड़ी तक ऊपर तक
1: पूरा पहाड़ी जाके नीचे आए?
0: अभी देखिए पैदल गई यहाँ?
1: पैदल गए,
0: घोड़ा गाड़ी नहीं ली। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब अभी रास्ता बहुत काफी बेहतर है। और जो इंतजाम खाने पीने के हैं और ऊपर चढ़ने तक, या दवा दारू कोई जरूरत पड़ी उसकी? और बाकी जो लोग वहाँ पे मदद के लिए हैं, उन्होंने आपकी अच्छे से मदद की, जो भी वहाँ पे कश्मीरी लोग थे? और सरकार की तरफ से भी अच्छे से आपको इंतजाम मिला था? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगी?
1: क्या कहना?
0: आप बम बोले के पास गई थी, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले।
1: सब अच्छा है, कुछ बोल नहीं सकते।
0: चलिए, आपके साथ आपकी बेटी भी है?
1: बेटी है
0: जी। आपका नाम क्या है?
2: नीता जाधव।
0: नीता जी, आपका कैसा सफर रहा?
2: अच्छा रहा।
0: और खुश हैं आप?
2: खुश है, बहुत खुश है।
0: तो आपकी जो अम्मा है, ये पैदल गई हैं?
2: पैदल गई ऊपर।
0: कहीं आपने घोड़ा तो नहीं लिया?
2: नहीं लिया।
0: बाकी सब खाने पीने की कोई दुश्वारी? लंगर सब ठीक?
2: सब लंगर अच्छे थे।
0: और
2: तरफ अच्छा खाना पीना सब अच्छा?
0: देखिए इतना आसान नहीं होता, इस सफर पे जाना बहुत ऊंचाई पर है। हाँ। मौसम की भी दिक्कत होती है, और अपने घर के सारे काम छोड़कर आप आई हैं। है
2: तो दर्शन करने पाने से
0: तो ये आपका बन कब से बना हुआ था? प्रोग्राम कब तक, कब से बना रही थी?
2: तो आप हुए थे
0: 2 महीने से? बहुत मन था,
2: बहुत मन।
0: और फिर बाबा के दर्शन,
2: हमको लगा नहीं था कि हम कभी आएंगे यहाँ पे बाबा के दर्शन करने को, पर किस्मत ने बाबा ने बुलाया तो हम चले आए
0: जी। तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप?
2: आने वाले ऐसा कि बहुत अच्छा लगा
0: जी जी। तो आप उनको भी कुछ मैसेज देना चाहेंगी? कोई चीज जो उनको,
2: वो अभी कर रहे ना तो बहुत अच्छा कर रहे, अब वो आगे भी ऐसा करेंगे ऐसा हमको लगता है
0: जी जी। बहुत अच्छा जी। शाहिन
3: जी, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। श्रोताओं, ये थी हमारी साथी उद्घोषक सायका रफीक, जो कि लाल चौक क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जो कि तीर्थयात्रियों के विचार हमारे साथ आपके साथ साझा कर रही थी। बने रहिए श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग।

0: जी श्रोताओं, जैसा कि अभी अभी हमने आपसे कहा था कि हम सायका से, जो लाल चौक से जुड़ी हुई हैं, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जो कि अपने जो कि तीर्थ यात्रियों के विचार जो है हमारे साथ साझा कर रही हैं, तो जुड़ते हैं एक बार फिर से इनसे। जी सायका जी।
1: जी सायका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी एक और यात्री जुड़ चुके हैं। मैम, आप कहाँ से आई और क्या नाम है आपका?
2: छत्रपति संभाजी नगर से।
1: मेरा नाम सुशीला सुप्रेशिंगर। जी सुशीला जी, आप दर्शन करके आई क्या?
2: जा रही
1: हैं? नहीं, दर्शन करके आए हम।
2: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लगा।
2: पहली बार आई?
1: हाँ, पहली बार आई।
2: और किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, मतलब दर्शन करने के लिए अपना काम छोड़ कर आना पड़ता है, इतनी दूर आना है, तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? कब से आप प्रोग्राम बना रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ?
1: हम तो 2 महीने से बना रहे थे प्रोग्राम,
2: तो बाबा ने बुला
1: भी दिया। बुला भी दिया।
2: दर्शन
1: बहुत अच्छे हुए, दर्शन बहुत अच्छे हुए।
2: और जो रस्ते में इंतजाम थे, लंगर का, मेडिकल कैंप,
1: बहुत अच्छा,
2: बाकी सब। और फिर चढ़ने में कोई दुश्वारी तो नहीं पेश?
1: कोई नहीं, हम पैदल गए, पैदल आए, कोई दिक्कत नहीं आई।
2: आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कराया था कि यहाँ पर कर किया आपने?
1: ऑनलाइन,
2: ऑनलाइन ही कराया। तो जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा, सब लंगर विंगर सब अच्छे है वहाँ पे। और
2: कश्मीरियों की मेहमान
1: नवाजी ठीक है, वो भी अच्छी है। और जो सरकार की मदद है ना, वो भी बहुत अच्छी, जो सैनिक रहते हैं वो भी बहुत अच्छे मदद करते।
2: आएंगे आप दोबारा? आना चाहेंगे?
1: हाँ, बहुत आना चाहेंगे, हर बार आना चाहेंगे। बाबा
2: तो जी हाँ, बहुत बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। कैसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सिलसिले में FM बालतल और FM पहलगाम की खसूसी बराह रास्त नशरियात। और हम तमाम यात्रियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती तजुर्बात और तासुरात हमारे समयन के साथ बांटे। अब मुझे सायका रफीक और हमारी टीम आसिफा मसूदी और सुरेश मीना को दीजिए इजाजत और आप हमारी खसूसी नशरियात सुनते रहिए शाहिन नारशी और सायका सलीम के साथ।
0: जी सायका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद। जी श्रोताओं, आप बने हुए हैं श्री अमरनाथ जी के यात्रा के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और ये थी हमारी साथी उद्घोषक सायका रफीक, और इनके साथ थे इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री सुरेश चंद मीना और आसिफा जी। और आपको बता दें कि ये जुड़े थे हमारे साथ लाल चौक के घंटाघर क्षेत्र से, जो कि तीर्थ यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं के साथ बात कर रही थी और तीर्थयात्री जो हैं अपने विचार साझा कर रहे थे यात्रा को लेकर, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। और हर बात, हम ये कहेंगे कि हर बात में इन यात्रियों की श्रद्धा जो है देखने को मिली। और हमारी यही कामना, यही प्रार्थना और सबसे बढ़कर हमारा यही प्रयास कि ये यात्रा जो है सुखद रहे, सफल रहे।

श्रोताओं, आपको बता दें कि दोनों मार्गों से इस सुहाने से मौसम में तीर्थ यात्रा जो है जारी है। बाबा भोले के भक्त जो है बाबा बर्फानी के नाम का जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मौसम में यात्रा का अलग ही एक अनोखा सा अनुभव होता है। हमारे ज़्यादातर यात्री गर्म क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ के सुहाने से

मौसम का आनंद लेते हैं फिर, और फिर दर्शन पाकर तृप्त होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने क्षेत्रों की ओर मधुर यादों के साथ चले जाते हैं।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में FM बालतल और FM पहलगाम के संग। आपको बता दें कि आज प्रातः हमारे जम्मू भगवती नगर के आधार शिविर से कुल मिलाकर अगर बात करें तो 8,815 तीर्थ यात्रियों को 363 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,831, महिलाएं 2,193, बालक 30 और साधु 598, साध्वीज 132 और ट्रांसजेंडर्स 31। और यूं हम आपको बता दें कि ये कुल मिलाकर संख्या जो है बन जाती है 8,815, जिनको आज सुबह तड़के ही भगवती नगर के बेस कैंप से रवाना कर दिया गया। और वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से इनमें से 4,826 तीर्थयात्रियों को रवाना कर दिया गया 182 छोटी बड़ी गाड़ियों में। और बालतल के मार्ग से जो है हम बता दें आप

को कुल मिलाकर 3,989 तीर्थयात्रियों को रवाना कर दिया गया 181 वाहनों में।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। 4 बजे का अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जी हाँ, 4 बजे तक 22,956 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन पाए हैं। पुरुषों की संख्या रही है 16,542, महिलाएं 5,833, बालक 229, साधु 106, साध्वीज 5, ट्रांसजेंडर 2 और सिक्योरिटी फोर्सेस 239। ऐसी संख्या बनती है कुल मिलाकर 22,956 तीर्थ यात्रियों ने 4 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहते हैं हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और आपको बता दें कि कुछ ही पल में जो है, कुछ ही क्षणों में आप तक आरती पहुंचेगी जो हमने बेस कैंप में रिकॉर्ड की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस विशेष प्रसारण के आखिरी जो है आखिरी स्वागत आपके लिए हम पेश करेंगे आरती। आइए मिलकर आनंद लेते हैं आरती का।

हरिओंशाय नम श्री परमात्मने नम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओं गजानन मोचगणाधिशेमितं कपित्थजंबो पदचारुभक्षणम्।

0: सुंदरम के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर जगन्नाथ श्री अमरनाथ सर्व तीर्थों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बाबा विनाशी मुनि जी महाराज श्री बाबा श्री चंद्र जी महाराज के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बाबा जल ज्योति शाह जी ज्योति स्वरूप सूत्री शाह जी महाराज के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बाबा रचाल साह जी श्री बाबा निहाल साह जी श्री बाबा कंगाल साह जी श्री बाबा झेंगर साह जी श्री बाबा मुस्ताक साह जी श्री बाबा दीदार साह जी श्री बाबा ब्रह्म साह जी श्री बाबा शंकर साह जी श्री बाबा अनुप साह जी श्री बाबा बजान साह जी श्री बाबा बहादुर साह जी श्री बाबा महबूब साह जी श्री बाबा तलक शाह जी महाराज बंद के वालियों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: साढ़े बारह घरानों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: गुरु महाराज सच्चे पिता जगत के वाले चार पहर दिन सुख का बिताया है चार पहर रात्रि भी सुख की बितानी है आठों पहर सुखाले सुख करे सवालियों के सवाल पूरे करे बंदी मानव की बंद खलास नगर खेड़ाया वाद रहे राजा राज करे प्रजा सुखी बसे साधु का शंकर मुक्का मिल भजन का प्रताप दुख कलेश का नाश अड़े सो झड़े शरण पड़े तो तरे काम सच्चे बादशाह सुत्रिशाह जी महाराज आप करें डेरा बस्ती आबाद रहे दो लंगर चलते रहे जहाँ तहाँ फकीर मर्दों के धरने लगे हैं तहाँ तहाँ सहायता करना मुश्किलें आसान करना फकीर मर्दों के दम कदम निरोग रखना गो ब्राह्मण के वृद्धि धर्म की जय जयकार जन जुटी के किलाज पंथ का वाधा संध्या समय की अरदास तेरे सचखंड में प्रवास अक्षर वाधी घाटे भूल जोग वक्षण हार सतगुरु बाबा सुत्रिशाह जी महाराज करो प्रवाण प्राणी मात्र का हो कल्याण शुरू करो।

0: श्रोताओ, आप आरती का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद नजार, इरशाद नायको और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोषक शाहिन ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक साइका सलीम
1: और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून। प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

मुड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावे, मुड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावे, गाँव से काम बनाओ मल चाहे गाँव का बात बतावे, गाँव से काम बनाओ मल चाहे गाँव का

0: मारिच के बोलावे रामना।
1: सीता पंचवटी में स्वर्ण मृग को देखकर मोहित होकर राम जी से स्वर्ण मृग मांगने का प्रस्ताव देती हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: राजा ने देखा, श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है।
1: नृप, जब राज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ, राम करिए ही जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही। वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए बेगी विलंब न करिए नृप। साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण, कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी। अयोध्या में बधावे बजने लगे।

0: एही अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौशल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन हिय हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें भवन में लाए। विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। नाथ, उचित तो यह था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुष होई सो करो गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
0: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेउ अभिषेक समाजु चाहत देन तुमही जुवराजु। राम करहु सब संयम आजु जौ विधि कुशल निबाही काजु।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिनहि सुहायन अबध बधावा चोरहि चांदनी रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर बन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
2: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे। कहते क्यों नहीं? राम, राजा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
3: कत सिख देई हमई को माई, गालु करम कहीं करबलु पाई। राम ही छाड़ कुशल कहीं आजू, जही जनेसु देई चुब राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे गर्भ में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो? देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु शोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। रानी तुम्हें तो तोशक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
2: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावा तोरी।
3: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
2: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक जो साचो हूँ काली, देऊ मांगू मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मो पर गरज ही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधु हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राज तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
3: एक ही बार आज सब पूछी, अब कुछ कहत जीव करी तुझी। फोर जोग कपारू अभागा, भले हु कहत दुख रव रही लागा। अरे माई तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हम ही कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़े चूक हमारी।
2: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
3: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन राहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रूप होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को चलाकर भस्म कर देता है।
2: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
3: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
2: क्या
3: उपाय की पाड़ लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हो राव। लेकिन रानी मन मलीन मुंह मीठ नृप, रावर सरल स्वभाव।
2: मंथरा
3: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाक कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, राजा ने भरत को जो ननिया

0: भेज दिया, उसमें आप बसराम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो, वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा?
0: हाँ, राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सपति स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो?
0: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है, ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
0: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा, तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता, तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
0: कहा पूछो, तुम अब हो ना जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना, पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है, अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
0: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया, मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भयहू दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा,
0: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा, तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी, मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ, जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया। नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर भी सवति सेवकाई, शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी, अस कस कहूं माने मनू ना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना, पर कह देती हूं जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाइए यहू फलु परिपाका। स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में चैन है, न रात को, न भूख लगती है, न नींद ही आती है।
1: मंथरा, तब?
0: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच?
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो है,
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग, जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी, सुध आई है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज चुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज

0: और राम को बनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम शपथ जब करी तब मांगहु, यही वचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानो, सीधे को भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय। तू बहुत ही बुद्धिमान है, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली।
2: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह के

0: अंततो गत्वा सांझ समय सानंद नृपु गयउ केकई गेह। लेकिन कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते। कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सभय नरेश प्रिया पहीं गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। राजा ने देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। श्रोताओ, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
1: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केही जम चैलीन्हा। कहु केही रंग कही करौ नरेसु, कहु केही नृपही निकासो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो। अपने मनो

0: रंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, सुनै ने तुम मंगल साज सजा लो।
1: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहू न देहू न लेहू। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
0: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना, तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहू, दुई के चार मांगी मकुलेहू। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
1: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
0: अच्छा
1: नाथ, दूसरा बर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। हाँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
0: हाँ।
1: तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
0: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिनी जिमि हाथे समूल। अब सुझार तीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत को राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे बरु देना, जाने हूँ ले ही मांगी चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूं स्वभाव, राम मातु कछु कहे उन्हें काहु। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते पढ़े हो मनोरथ छूछे। प्रिय, अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे।

0: एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। अज हृदय उदरत ते आज रिस परिहास इस साचे हु साचा। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा। प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके भर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आहीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन मार।
0: हा राम, हा राम, हा राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसी इस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: कनी दिन कर कुल होसी कुठारी, मांगु मात अभी देव तो ही, राम बिरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाती, नाही तो जरही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम कही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत।

हित हो गया, मगर मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो इन्हीं इकलाग करूं सोई, लोचनोट बैठ मुगोई। मैं तेरे आगे हौत जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना। अरिया भागनी, अंत में तू पछताएगी कि जो तू ताहत के लिए गाय को मार रही है। हा राम, हा राम। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे। भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। अयोध्या से

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।